हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज हम इस कहानियों की गुल्लक में एक कहानी और डालेंगे और इस कहानियों की गुल्लक को फिर से ज्यादा और भारी करेंगे। आज की कहानी है चार दोस्तों की, चार यार एक दोस्ती जो कभी टूटी नहीं। मुंबई की बारिश का एक अलग ही मूड होता है, कभी रोमांटिक, कभी डिप्रेसिंग और कभी कभी जिंदगी बदल देने वाली। ये कहानी है चार दोस्तों की, आरव, समीर, फैजान और कबीर। चार अलग पर्सनालिटीज, चार अलग सपने, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उनकी दोस्ती। वो दोस्ती जो स्कूल के एक ब्रोकन बेंच से शुरू हुई और जिंदगी के सबसे बड़े तूफान तक साथ चली। मुंबई के गवर्नमेंट स्कूल का क्लासरूम, टीचर अटेंडेंस ले रही थी, समीर खान प्रेजेंट मैम, कबीर शर्मा प्रेजेंट मैम, आरव मेहता प्रेजेंट मैम, फैजान अली प्रेजेंट। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये चार नाम एक दिन एक दूसरे की जिंदगी बन जाएंगे। लंच ब्रेक में एक इंसिडेंट हुआ, एक सीनियर बच्चा फैजान का टिफिन ले गया और मजाक उड़ाने लगा, अरे देख बिरयानी वाला आ गया है। पूरा क्लास हंस रहा था, फैजान चुप था। तभी आरव खड़ा हुआ, भाई टिफिन वापस दे दे। सीनियर हंसा, तू क्या करेगा। आरव ने सीधा उसके हाथ से टिफिन खींच लिया। उस दिन पहली बार समीर और कबीर ने आरव को देखा और समझा कि ये लड़का अलग है। उसके बाद

से था। फादर ऑटो चलाते थे। आरव का सपना था फिल्म मेकर बनने का, लेकिन घर वालों को लगता था फिल्म लाइन में फ्यूचर नहीं है। समीर ब्रिलियंट कोडर, कंप्यूटर का मैजिशियन, लेकिन फाइनेंशियली वीक। कभी कभी इंटरनेट रिचार्ज करने के भी पैसे नहीं होते थे उसके पास। कबीर बड़ा फनी बंदा था, हर सिचुएशन में जोक मार देता, लेकिन अंदर से ब्रोकन। उसके पेरेंट्स रोज फाइट जो करते थे, वो बस हंस के सब हाइट करता था। फैजान सिंगर बनना चाहता था।

कभी एक्टिंग और स्क्रिप्टिंग कर लेगा, आरो डायरेक्शन, सब एक्साइटेड थे। लेकिन प्रॉब्लम एक थी, पैसे, कैमरा रेंट, लैपटॉप, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ट्रैवल, सब कुछ एक्सपेंसिव था। फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। दिन में कॉलेज, रात में काम, दिन में कॉलेज, रात में काम, दिन में कॉलेज, रात में काम। कभी कभी रेलवे स्टेशन पे शूट, कभी स्लम एरिया में, कभी टेरेस पे। उनका पहला वीडियो सिर्फ 312 व्यूज ले पाया, दूसरा 89 और तीसरा तो पूछो ही मत, ओनली 41। कबीर फ्रस्ट्रेटेड हो गया, भाई ये नहीं चलेगा यार। लेकिन आरव बोला एक दिन चलेगा। फैजान चुप था, उसके घर पे प्रेशर बढ़ रहा था। अब्बू रोज बोलते थे गैरेज ज्वाइन कर ले, लेकिन वो सपना नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन समीर एक कैफे में फ्रीलांस कोडिंग का काम कर रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आया, सूट पहना हुआ, एक्सपेंसिव वॉच। तुम समीर हो? हाँ मैं समीर हूं।

स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद आचार्य 90 एफएम में। जैसे कि हम सुन रहे थे, चार दोस्त, चारों का एक सपना। एक सपना वो ऐसा लिए आए थे कि एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला, लेकिन उनका चैनल बहुत तड़ाक से नीचे गिर चुका। पहला वीडियो 312, दूसरा वीडियो 89 और तीसरे का तो हाल मत पूछो, 41 व्यूज।

तुम्हें साइबर फ्रॉड केस में अरेस्ट किया जा रहा है। जो सॉफ्टवेयर तुमने बनाया था वो इलीगल फाइनेंशियल स्कैम में यूज हुआ है। समीर, फैजान, कबीर, आरव, सब शॉक। विक्रांत ने उन्हें पॉन की तरह यूज किया था। न्यूज चैनल्स पे नाम आ गया, कॉलेज स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन फ्रॉड। फैजान के अब्बू ने थप्पड़ मारा, यही कर रहा है तू। कबीर के पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया। आरव के फादर की तबीयत खराब हो गई स्ट्रेस में। सब टूट गया एक गलती से और पूरी जिंदगी उलट गई, जैसे मानो कभी कुछ था ही नहीं। सब एक पल में उथल पुथल हो गया। चारों दोस्तों की जिंदगी रास्ते पर आ गई। समीर जेल में चला गया, उसकी आंखों में गिल्ट था, वो खुद को कोस रहा था, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सब गलत कर दिया, मुझे वो ऑफर लेना ही नहीं चाहिए था। तब आरव बोला, नहीं भाई, हम सब साथ थे। कबीर पहली बार सीरियस था, अब क्या करेंगे, कोई आंसर नहीं था। 3 दिन तक सब होपलेस रहे, फिर एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया, अननोन नंबर, और उस कॉल पे कहा गया, तुम लोगों को फंसाया गया है। वॉइस फीमेल की थी। मैं विक्रांत की एक्स एम्प्लॉय हूं, मेरे पास प्रूफ है। सब शॉक थे। उस एक लड़की का नाम था नैना। वो विक्रांत के इलीगल ऑपरेशंस जानती थी, लेकिन वो डर के मारे चुप थी। अब फाइनली वो इन चारों को हेल्प करना चाहती थी। नैना ने बताया, विक्रांत के ऑफिस सर्वर में सब एविडेंस है। समीर बोला, अगर वो डेटा मिल गया तो मैं इनोसेंट तो हो सकता हूं। प्रॉब्लम, सर्वर हेविली सिक्योर था और विक्रांत डेंजरस आदमी था, लेकिन अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अगर समीर को खुद को इनोसेंट प्रूफ करना है तो उसको एविडेंस की जरूरत थी। एक रात चारों सीक्रेटली विक्रांत के ओल्ड वेयर हाउस पे गए। रेनी नाइट, डार्क बिल्डिंग, हार्ट बीट फास्ट। कबीर नर्वस था, भाई अगर पकड़े गए तो? फैजान बोला, तो साथ पकड़े जाएंगे। ये लाइन सुनकर सब मुस्कुरा गए। अब वेयरहाउस पे एकदम काला अंधेरा, सिक्योरिटी टाइट, जगह जगह पे वॉचमैन घूम रहे हैं, लेकिन समीर को इनोसेंट प्रूफ करना था तो ये कदम उनको बढ़ाना ही था। और ये जो सिचुएशन थी इसे फेस करना ही था। तो चारों ने डिसाइड किया कि भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी,

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आचार्य 90 एफएम में। आप सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक, जिसमें हम सुना रहे थे चार दोस्तों की कहानी। चार दोस्त अभी विक्रम के ओल्ड वेयर हाउस पे पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर ऑफिस में जाने का कोई रास्ता नहीं था। और जाकर ये पता चला कि सारी चीजें वहां पे एकदम सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वो वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो वापस आने के बाद सबसे पहले उन्होंने बनाया एक प्लान कि रात में किस तरीके से विक्रम के पुराने ऑफिस में जाएंगे, समीर किस तरीके से सिस्टम हैक करने लगेगा और कौन क्या क्या काम करेगा। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। चारों विक्रम के ओल्ड वेयरहाउस में पहुंच चुके थे। सबने डिसाइड किया था अपना अपना टास्क, सबको क्या करना है, और अपने टास्क के मुताबिक काम शुरू हुआ। समीर सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर रहा था, आरव कैमरास देख रहा था, कबीर गार्ड डिस्ट्रैक्ट कर रहा था फनी एक्टिंग से, फैजान बेसमेंट में फाइल सर्च कर रहा था। सब परफेक्टली चल रहा था, तभी अलार्म बज गया। रन रन रन, गार्ड्स उनके पीछे भागने लगे। कबीर गिर गया, एक गार्ड उसके पास पहुंच गया, लेकिन वापस आरव आ गया। उसे हाथ मत लगाना। फाइट स्टार्ट हो गई। फैजान ने कबीर को उठाया। समीर चिल्लाया, डाटा मिल गया, डाटा मिल गया, लेकिन एग्जिट ब्लॉक था, सब कॉर्नर ब्लॉक हो गए थे। उस वक्त कबीर हंसा और बहुत जोर से हंसा। आरव गुस्सा हुआ, पागल है क्या तू? कबीर बोला, भाई स्कूल में प्रॉमिस किया था ना साथ रहेंगे। उस मोमेंट पे उन्हें डर से ज्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट था, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं

हमारे स्कूल में किए हुए प्रॉमिस को कितना ज्यादा महत्व देते हैं या कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, ये एक उसी की कहानी चल रही थी। अब दौड़ भाग कर वो वहां से निकल पड़े। फाइनली नैना से ये चारों मिले। नैना ने सीक्रेटली पुलिस को सारे एविडेंस भेज दिए। विक्रम अरेस्ट हो गया। न्यूज चैनल की हेडलाइन बदल गई, यंग स्टूडेंट फ्रेम्ड बाय बिजनेसमैन। समीर फ्री हो गया, चार्जेस ड्रॉप हो गए, लेकिन इमोशनल डैमेज अब भी था। सोसाइटी स्टिल जज देम। लोग विस्पर करते हैं ये वही फ्रॉड वाले लड़के हैं। कबीर डिप्रेस होने लगा था। फैजान ने सिंगिंग छोड़ दी थी। आरव शांत हो गया था। सब फिजिकली फ्री तो थे लेकिन मेंटली ब्रोकन थे। और फिर एक दिन आरव ने ओल्ड हार्ड ड्राइव निकाला, उसमें उनके पुराने वीडियोस थे, मस्ती, लाफ्टर, ड्रीम्स। कबीर स्लोली स्माइल करने लगा। फैजान की आंखों में टीयर्स आ गए। आरव बोला, हमने गलती की लेकिन क्राइम नहीं। हम गिर गए लेकिन खत्म नहीं हुए। समीर ने पूछा, अब क्या? आरव ने स्माइल किया और कहा, अब कम बैक। चारों ने फिर से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, लेकिन इस बार फेक ग्लैमर नहीं, रियल स्टोरीज, लोगों के स्ट्रगल्स पर, लोगों की मेंटल हेल्थ पर, फ्रेंडशिप पर, फेलियर पर। उनका कंटेंट अब उनसे ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ था, लोगों की जिंदगी को बताने के लिए जुड़ा हुआ था। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अब वो कैमरा में कैद करने लगे थे, उनकी कहानियों को लोगों के सामने लाने लगे थे। उनका एक पॉडकास्ट इसी तरीके से वायरल हो गया, When Life Frames You, Million of Views। लोग कनेक्ट करने लगे, कमेंट्स भर गए, भाई ये तो मेरी स्टोरी है, रियल फ्रेंडशिप स्टिल एग्जिस्ट, यू गाइस सेव मी। स्लोली स्लोली सब चेंज होने लगा। फैजान का म्यूजिक फेमस होने लगा। समीर को स्टार्टअप जॉब मिली। कबीर स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा। आरव डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन गया। 10 साल बाद सेम मरीन ड्राइव, सेम बारिश, बस चेहरे मैच्योर हो गए थे। कबीर चाय सिप करते हुए बोला, भाई अगर उस टाइम हम टूट जाते ना तो आज कुछ नहीं होता। फैजान स्माइल्ड, हम प्रॉब्लम में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि हम वीक नहीं थे, हम फंसे क्योंकि हम इनएक्सपीरियंस थे। समीर एडेड, लेकिन निकले क्योंकि हम यूनाइटेड थे। आरव ने आसमान की तरफ देखते हुए बोला, दोस्ती का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं होती दोस्तों, दोस्ती का मतलब होता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो तब भी कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बारिश तेज हो गई। चारों फ्रेंड समंदर के सामने खड़े थे और उनकी फ्रेंडशिप भी हर लहर से ज्यादा स्ट्रांग थी। उनकी फ्रेंडशिप, कई बार जिंदगी आपको गलत रास्तों पे ढकल देती है, लेकिन अगर आपके पास सच्चे दोस्त तो हर अंधेरा छूटने लगता है, हर अंधेरा मिटने लगता है, एक नया सवेरा जरूर आता है, एक नई जिंदगी लेकर, एक नई उम्मीद लेकर, एक नई कहानी लेकर, एक नया दिन लेकर। और वो नई उम्मीद, वो नई किरण हमारी जिंदगी में कब इतनी बड़ी विक्ट्री दे जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो वक्त मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते वही दोस्त होते हैं। जो तुम्हारे आंसू आने पर तुम्हें हंसाने लगे वही दोस्त होते हैं। जो तुम्हारे साथ चलते हैं वही दोस्त होते हैं। जो तुम्हारे सपने को अपना सपना समझते हैं वही दोस्त होते हैं। जो गिरने पर सर पे टपली मार के उठाए वही दोस्त होते हैं। जो बेवजह बिन बात मजाक उड़ाए वही दोस्त होते हैं। सो ऐसी दोस्तों की सुन रहे थे हम कहानी, और इस कहानी में हमने देखा कि
मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर एक साथ रहकर हर मुसीबत से लड़ा जा सकता है, हर मुसीबत पे काबू पाया जा सकता है, हर बुरे इंसान को हराया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा साथ में रहना, हमारा हमारे दोस्तों को सपोर्ट करना, दोस्तों के साथ खड़े रहना। तो आज की कहानियों की गुल्लक में बस इतना ही। हम दोबारा फिर मिलेंगे आचार्य 90 FM पर, तब तक सुनते रहिए कहानियों की गुल्लक। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। मंडली कसे आहत सगळे, ऑल गुड ना? हमारे प्यारे ऑडियंस की तारीफ में पेश है कुछ लाइनें। अर्ज किया है, स्वाद के जायके की वादियों में हम आपका स्वागत करते हैं। इस महफिल में आपको न्योता देते हैं, आपकी मौजूदगी का हमें था बेसब्री से इंतजार। इस खुशी को हम दिल की गहराई से सजाते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि मैंगो मूड वाला फूड हम फिर से बनाएंगे और इस आम वाले सीजन को खास बनाने हम फिर से हाजिर हैं। कच्चा आम मीन्स कैरी से बनी रेसिपीज तो हमने बना ली, उसके बाद पके हुए आम से भी कई सारी मीठी और तीखी रेसिपीज हमने आपकी खिदमत में पेश की। आज हम एक मास्टर स्ट्रोक मारने जा रहे हैं। झटपट बनने वाली मैंगो रेसिपीज तो हमने सीख ली, अब सिस्टमैटिक तरीके वाली मैंगो रेसिपी को हम बनाते हैं। 10th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से होते हुए एक व्यंजन भारत आया, फिर भारतीय मसालों और सब्जियों के साथ इसने अपना रूप बदला। इस रेसिपी का नाम था वेज पुलाव। हरे मटर के दाने और साबुत मीन्स अखे गरम मसालों को इस्तेमाल करके बनता है मटर पुलाव। गाजर, आलू, गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च जैसी कई सब्जियों को मिलाकर बनता है वेज पुलाव। सब्जियों के साथ साथ अगर इसमें पनीर के टुकड़े भी डालें तो तैयार होता है पनीर पुलाव। और सूखा मेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश के साथ पनीर और फलों के टुकड़े शाही अंदाज में पकाकर तैयार होता है नवरत्न पुलाव। वैसे क्या आप जानते हैं कि पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क है? तो जनाब सुनिए, पुलाव बनाते समय चावल और सब्जियों को एक साथ पकाया जाता है, बिरयानी बनाते समय चावल और करी को अलग अलग पकाया जाता है, फिर उनकी परत मीन्स लेयर लगाकर दम दिया जाता है। यह है पुलाव और बिरयानी का इम्पोर्टेंट फर्क। अब हम आज की पहली रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है मैंगो पुलाव। मैंगो के सीजन को बाय बाय करने से पहले हम इसे बना ही लेते हैं। मैंगो पुलाव ये एक मीठी रेसिपी है जिसमें अल्फोंसो मैंगोज को कुछ गरम मसालों के साथ बासमती चावल को यूज करके बनाया जाता है। अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल 1 कटोरी, अल्फोंसो मैंगो पल्प 1 कटोरी, बारीक कटे हुए आम के टुकड़े 1 कटोरी, शक्कर 4-5 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, केसर के धागे 15 से 20, इलायची पाउडर 2 चुटकी, देसी घी लगभग 1/2 कटोरी। फिर हमें चाहिए लौंग 4 या 5, काजू बादाम के टुकड़े और किशमिश 4 चम्मच, दालचीनी 2 टुकड़े। दालचीनी के टुकड़ों के बजाय आप उसका पाउडर लें तो पुलाव में थोड़ा सा तीखापन आएगा। फिर हमें चाहिए सोफ्ट पिस्ता के स्लाइस 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इस रेसिपी को सुनने से पहले हम बासमती चावल को अच्छे से धो लेते हैं। चावल को धोकर लगभग 1/2 घंटे तक हम इसे पानी में सोक करते हैं। ऐसा करने से चावल के दाने पानी सोक कर फूल जाते हैं जिससे वो पकते समय टूटेंगे नहीं। चावल के दानों की लंबाई भी बढ़ती है और उन्हें पकाते समय वो बिल्कुल खिले खिले और सॉफ्ट बन जाते हैं। लगभग 1 इंच ऊपर तक ताजे पानी में हमें बासमती चावल को सोक करना है। चलिए अब हम मैंगो पुलाव बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाले एक बर्तन में देसी घी को गर्म कीजिए। अब हमें इसमें तड़का लगाना है। घी गरम होने के बाद उसमें लौंग डालिए, फिर दालचीनी के टुकड़े या पाउडर को भी डालिए। जैसे ही ये पक जाए मीन्स अप्रोक्सीमेटली 10-12 सेकेंड्स के बाद इसमें 2 कटोरी पानी डालिए। थोड़े समय बाद उस पानी में उबाल आएगा, फिर उस उबलते पानी में थोड़ा सा नमक डालिए। नमक डालने के बाद उसमें शक्कर भी डालिए।
साथ ही कटे हुए आम के टुकड़े भी उसमें डालिए। इस स्वाद को एनहांस करने हम डालेंगे ताजे नींबू का रस। अब इस मिश्रण में ऐड कीजिए सोक्ड बासमती चावल। फिर क्या करना है? अरे भाई, फिर धीमी आंच पर इन चावलों को पकने दीजिए। ये चावल जब पक रहे होंगे तब इसकी खुशबू आपको खुश कर देगी। लगभग 15-20 मिनटों के बाद ये चावल पूरी तरह से पक जाएंगे। उसके बाद वो पके हुए चावल एक प्लेट में निकालिए। अब हमें इन चावलों को ठंडा करना है। जब तक ये चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक हम एक गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हमारे बासमती चावल हो गए हैं ठंडे और हम बढ़ रहे हैं अगली स्टेप की तरफ। तो भाई आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि एक कढ़ाई में पाव कटोरी घी लेना है, फिर गैस को ऑन करके हमें घी को गर्म करना है। अब इस गर्म घी में हम डालेंगे काजू, बादाम और किशमिश। इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई करके साइड में रख दीजिए। आप गैस को बंद मत कीजिए। उस बचे हुए घी में फ्रेश मैंगो पल्प डालिए। धीमी आंच पर ये मैंगो पल्प 2-3 मिनटों तक अच्छे से पकाइए। ध्यान रहे ये जले नहीं। फिर उस पके हुए आमरस में डालिए पकाकर ठंडे किए हुए चावल। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें डालिए थोड़ी सी शक्कर और साथ ही आम के कुछ टुकड़े। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कीजिए। आखिर में केसर, इलायची पाउडर और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें ऐड कीजिए। बाद में इस कढ़ाई पर एक ढक्कन रख दीजिए। 1-2 मिनट के लिए मींस एक भाप आने तक इसे पकने दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। एक सर्विंग प्लेट में तैयार मैंगो पुलाव को निकालिए। उस गर्मा गर्म पुलाव की खुशबू को अपने मन में भी भर लीजिए। फिर सोक्ड और स्लाइस्ड पिस्ता के टुकड़ों से तैयार मैंगो पुलाव को डेकोरेट कीजिए। इस मैंगो पुलाव के साथ क्या खा सकते हैं? तो भाई इसके साथ आप खा सकते हैं आम का तीखा अचार या गोरी गोरी और क्रिस्पी कुरडई। और इसकी रंगत बढ़ाने के लिए आप एक ग्लास मट्ठा मींस मसाला छाछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हमारा मैंगो पुलाव हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने अगर आप हो रहे हैं बेकरार तो फिर इसे तुरंत बनाइए। अब ये मैंगो पुलाव बन जाए तब इसे अपनों के साथ मिल बांट कर खाएं। एक और खास बात, मैंगो पुलाव को सोफिस्टिकेटेड तरीका I mean काटा चम्मच से मत खाइए, इसे अपने हाथों से ही बिंदास खाइए। अपनी उंगलियों से मैंगो पुलाव का टेम्परेचर और टेक्सचर फील कीजिए, फिर एक नजाकत से उसका निवाला उठाइए। खाने से पहले मैंगो पुलाव का अरोमा मींस जायका फील कीजिए, बाद में एकदम तसल्ली के साथ आराम से उसे एंजॉय कीजिए। इतना लजीज खाना खाने के बाद उस खाना बनाने वाले का शुक्रिया भी अदा कीजिए। इस मैंगो पुलाव की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है जश्ने आम। फिलहाल चल रहा है एक मौसम, नाम है जिसका आम। स्वाद का जायका इस शो पर जश्न मनाएंगे खास। कभी बनाया मैंगो पराठा तो कभी मैंगो सालसा, इस आम ने हमारे किचन में सेलिब्रेट किया जलसा। आम तेरे कितने रूप, मैं वारी जाऊं तुझ पे, इतनी शानदार रेसिपीज बनाकर मैं तो इतराई खुद पे। नाम तो है इसका मैंगो या आम, स्वाद है एकदम अनोखा, तभी तो दिल में जगह इसकी खास। इस आम की रेसिपी ने मेरे दिल को इतना लुभाया, साइड में रख दी डाइटिंग और जी भर के आम खाया। मेरे भारत देश से जुड़ी ये आम बातें, दोस्ती होती पक्की खाना खाते खाते। आम का पुलाव बनाकर मनाया जश्ने आम, आचार्य 90 FM के ऑडियंस हमारे लिए एकदम खास। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट रेसिपी की ओर। आम के अलावा एक और चीज है जिसे गर्मियों के सीजन में जी भर के खाया जाता है। बॉटनिकली ये एक फ्रूट है, लेकिन ये मिलता है सब्जी वाले के पास। सैंडविच, कचुम्बर और सलाद बनाते समय इसे यूज करते हैं। इसमें 95% से ज्यादा मात्रा में पानी होता है। अपने हाइड्रेटिंग गुणों और कुरकुरेपन के लिए ये फेमस है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से स्किन में चमक आती है, इसलिए अपने ब्यूटी रेजिम में इसे जरूर शामिल कीजिए। जी हाँ, सही गेस किया आपने, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ खीरा मींस ककड़ी की। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं खीरे की स्मूदी मींस क्यूकम्बर स्मूदी। जब ककड़ी को किसी खास अंदाज में स्टाइलिश तरीके से पेश करना हो तब आप खीरे की स्मूदी मींस क्यूकम्बर स्मूदी को जरूर बनाइए। ये एक एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग और हेल्दी टाइप का ड्रिंक है, इसे आप लगभग 5 मिनट में झटपट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्यूकम्बर स्मूदी मतलब खीरा स्मूदी को बनाने की क्विक रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बड़ा सा एक खीरा मतलब काकड़ी, ताजा दही 1.5 कप, ताजा पुदीना 8 से 10 पत्ते, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, चीनी मींस शक्कर 2 चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं चुटकी भर काला नमक ले रही हूँ। अब हम क्यूकम्बर स्मूदी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले क्यूकम्बर मींस ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए, फिर पीलर से उसका छिलका हटाइए। छिलका हटाने के बाद उसके छोटे टुकड़े आप बनाइए। अब सुनिए एक इम्पोर्टेंट बात, उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आप पहले खाइए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो वो ककड़ी आप फेंक दें, उसे बिल्कुल यूज नहीं करना है। कड़वी ककड़ी को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर ककड़ी कड़वी नहीं है तो फिर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। फिर उस ककड़ी को बारीक टुकड़ों में काट। अब हमें मिक्सर में स्मूदी को बनाना है।
इसके लिए मिक्सर के बड़े जार में खीरा मींस ककड़ी के टुकड़े और पुदीने के पत्ते डालिए। इसे एक मिनट के लिए मिक्सर में घुमाइए। ऐसा करने से इसका फाइन पेस्ट बनेगा। अब इसमें दही, शक्कर और नींबू का रस भी डालिए, साथ ही चुटकी भर काला नमक भी ऐड कीजिए। अब मिक्सर के जार का ढक्कन लगाकर इसे पीस लीजिए। लगभग एक या दो मिनटों में ये मिश्रण एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसे पेश करने का टाइम हो गया है। सबसे पहले एक छोटी प्लेट में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी शक्कर, लगभग आधा या एक चम्मच नमक और शक्कर मिक्स करके रखिए। फिर कांच का एक लंबा ग्लास लीजिए। उस कांच के ग्लास के किनारों को थोड़ा सा पानी लगाइए। फिर उस ग्लास को उल्टा करके नमक और शक्कर की प्लेट पर रखिए। ऐसा करने से क्या होगा भाई? ऐसा करने से होगा ये कि जब आप क्यूकम्बर स्मूदी को सर्व करेंगे तब उसके किनारों पर क्रिस्टल्स जैसी चमक दिखेगी और क्यूकम्बर स्मूदी का प्रेजेंटेशन एकदम प्रोफेशनल लुक वाला दिखेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? फिर उस ग्लास में एकदम आराम से क्यूकम्बर स्मूदी को डालिए। उसके ऊपर पुदीना के दो पत्ते भी रखिए। उसके बाद अपने मोबाइल कैमरा में क्यूकम्बर स्मूदी की छवि को कीजिए बंद, क्योंकि उसे टेस्ट करने के लिए लम्हे बचे हैं चंद। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओल्ड रेडियो। इस क्यूकम्बर स्मूदी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मखमली स्मूदी। गर्मी को भगाने के लिए बनाई क्यूकम्बर स्मूदी। इसका टेक्सचर ऐसा लगता जैसे खट्टा मीठा मखमली। ककड़ी में जब मिला ताजा ताजा दही, तब जाकर बना स्मूदी का टेक्सचर सही। इसे पौष्टिक बनाने डालो काला नमक, काला नमक खाकर सेहत जाएगी चमक। इसमें जब डालोगे नींबू की कुछ बूंदे, तब एंजॉय करोगी स्मूदी अपने नैनों को मूंदे। क्यूकम्बर की ये स्मूदी है हिंदुस्तानी और वेस्टर्न फ्यूजन। झटपट बनाओ इसे और दूर करो कंफ्यूजन। जी भर कर खाओ आप देसी खाना। उसके साथ सुनिए आप हमारा अगला गाना।

वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी खाद्य संस्कृति में तरह तरह के व्यंजन हैं। हमें तो बस बहाने ढूंढने हैं उनसे दोबारा मिलने के। अब आप क्यूकम्बर स्मूदी की ही बात ले लो। हमारी भारतीय खाद्य संस्कृति में थाली के लेफ्ट साइड मतलब बाई ओर नमक, चटनी, कचुम्बर और पापड़ जैसे व्यंजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में परोसे जाते हैं, जिससे हमारे भोजन का स्वाद और ज्यादा निखरता है। सीजन के मुताबिक चटनी और कचुम्बर के टाइप्स को चेंज करना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। पर्टिकुलर सीजन में जो भी फल और सब्जियां उपलब्ध होती हैं, उस हिसाब से हमारा भोजन तैयार होना ही चाहिए। फिलहाल गर्मी वाला जो सीजन चल रहा है उसमें हमने इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ली है। अगर आपके पास भी ऐसी ही सीजन स्पेशल इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए। हमारे देश की खाद्य संस्कृति को निभाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज शुरुआत में हमने बनाया मैंगो पुलाव। भिगोए हुए बासमती चावल, हापुस आम और कुछ चुनिंदा मसालों को यूज करके हमने मैंगो पुलाव इस यमी रेसिपी को एकदम शिद्दत से बनाया है कि नहीं। मैंगो सीजन को हर तरह से सेलिब्रेट करने की ये हमारी छोटी सी कोशिश एकदम कामयाब रही। उसके बाद हमने एक नॉन फायर रेसिपी बनाई। क्यूकम्बर स्मूदी नाम की इस मखमली रेसिपी ने गर्मी को थोड़ा कम करने की सफल कोशिश की। क्रिस्टल डेकोरेशन वाली और दही के साथ खीरा मींस ककड़ी का कॉम्बिनेशन तो गर्मी को मात देने एकदम सुपर कूल कॉम्बिनेशन साबित हुआ। अजी जनाब, बिना तले भी हम बहुत सी चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ही सकते हैं। खाने को डीप फ्राई करने की बजाय थोड़ा सा तेल लगाकर हम नॉन स्टिक पैन पर अपनी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल पकोड़े, जो बारिश के मौसम में सिग्नेचर डिश है, उसे कैसे बनाएं? तो जनाब जरा सुनिए। आप अप्पम पात्र को जानते हैं? हाँ, वही जिसमें अप्पम बनाते हैं, जिसमें इडली पात्र के जैसे कई सारे खांचे होते हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसके हर एक खांचे में लगभग आधा चम्मच तेल फैलाकर हम पकोड़े भी तलेंगे और बटाटा वड़ा भी तलेंगे। कब? कब मतलब झमाझम बारिश को शुरू तो होने दीजिए, मौसम को करवट तो लेने दीजिए, सुहाना सा सावन बरसने तो दीजिए। फिर हम हाले दिल को बयान भी करेंगे और साथ ही लजीज खाने का जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके पहले आप कीजिए एक काम, आचार्य 90 FM इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपकी खिदमत करने का एक मौका दीजिए। वैसे बारिश के सुहाने मौसम में वो कौन सी चीज है जिसे खाना आपको बेहद पसंद है? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अर्ज किया है, मेरी जमीन पर कितने ही आसमान रहे, आचार्य 90 FM के ऑडियंस का हमेशा ही साथ रहे। फिर लेकर आऊंगी मैं कुछ रेसिपीज सुहानी, हर रेसिपी के साथ एक छोटी सी कहानी।

मिलना है हमें हर सोमवार और शुक्रवार, जायके के सफर में दिल हुआ बेकरार, सजती है थाली और खाने में मसाले, आऊंगी मैं वापस अपना वादा निभाने, हमारी भारतीय संस्कृति में जायके का भंडार। ऑडियंस जी, जल्द ही मिलेंगे हम और लाएंगे स्वाद के जायके का दरबार। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

अजय एन NDFM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सब चंगा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आचार्य 90FM के ऑडियंस हमारे खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना मतलब स्वाद का जायका बखूबी निभाना है। अर्ज किया है, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, हम करते हैं ऑडियंस जी आपसे ढेर सारा प्यार, आपके आने से आई स्वाद का जायका शो पर बहार। बारिश की बौछार से भीगा धरती का दामन, हमारे ऑडियंस जी की मौजूदगी से महका आचार्य 90FM का चमन। भाई आम वाला खास मौसम तो फिलहाल चल ही रहा है, आम के साथ मार्केट में लीची भी पधारी है। हम यूजुअली आम और लीची को अलग अलग खाते हैं, राइट? लेकिन हमारी आज की रेसिपी इन दोनों को मिलाकर बनने वाली है। आम के शौकीनों के लिए गर्मियों का सीजन मींस मैंगो की वैरायटीज को आजमाने का मौसम होता है। रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक से लेकर नए नए स्नैक्स और टेस्टी मिठाइयाँ, भाई लिस्ट तो बढ़ती ही रहेगी। हमारी आज की रेसिपी मैंगो और लीची का फ्यूजन है, जिसके पहले निवाले में ही आप इसके दीवाने हो जाएंगे। लंच या डिनर पार्टी में परोसने के लिए ये एक शानदार मिठाई है और इस शानदार मिठाई का नाम है मैंगो स्टफ लीची। मैंगो स्टफ लीची बनाने में बेहद आसान है और आपकी स्वीट क्रेविंग को ये तुरंत शांत कर देगी। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो स्टफ लीची बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पूरी तरह से पकी हुई लाल लीची 15 या 20, गाढ़ा दूध 1/2 लीटर, फिर हमें चाहिए नींबू का रस 2 चम्मच, मिश्री पाउडर मींस खड़ी साखर का पाउडर 4 चम्मच, ताजे और पके हुए आम 2, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, सोक्ड पिस्ता 5 से 6, केसर के धागे 7-8, और एक जरूरी इंग्रेडिएंट मतलब ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में जरूर उतरेंगी। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप आम को पानी में भिगोकर रख दीजिए। लगभग 1 से 2 घंटे के लिए हमें आम को पानी में भिगोना है। ऐसा करने से आम के अंदर की हीट थोड़ी सी रिड्यूस होगी। लगभग 1 घंटे के बाद आप आम का छिलका हटाइए, फिर आम की गुठली को भी हटाइए। इस मैंगो पल्प मींस आम के गूदे को चर्नर की मदद से स्मूथ बनाइए। ऐसा करने से मैंगो पल्प में से गुठलियां निकल जाएंगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मोटे बेस वाले एक बर्तन में हमें दूध को उबालना है। जैसे ही दूध उबलने लगे हम उसमें नींबू का रस डालेंगे। अब 1 चम्मच की मदद से नींबू के रस को दूध में अच्छे से मिक्स कीजिए। ऐसा करने से दूध फट जाएगा और छेना मींस ताजा पनीर तैयार हो जाएगा। जब उस फटे हुए दूध से सॉलिड और लिक्विड पार्ट सेपरेट हो जाए, तब एक साफ और सूती कपड़े से हमें उसे छान लेना है। आप चाहे तो छलनी की मदद से छेना और मट्ठा को अलग कर सकते हैं। उसके बाद छेना मींस ताजे बने हुए पनीर से आप पानी को निचोड़ लीजिए। बचे हुए ताजे छेना को अपनी हथेलियों से गूंथकर एकदम सॉफ्ट बनाइए। माय गॉड, इतनी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद हमारे प्यारे ऑडियंस का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्मूथ मैंगो पल्प और सॉफ्ट ताजा ताजा छेना अब हो गया है तैयार और मैंगो स्टफ लीची बनाने हम नहीं कर सकते और ज्यादा इंतजार। अब सॉफ्ट छेना मीन्स गूंद कर रखे हुए पनीर में हम ऐड करेंगे मैंगो पल्प। मिश्री मीन्स खड़ी शक्कर को भी हम ऐड करेंगे। खड़ी शक्कर पाउडर फॉर्म में है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें इलायची पाउडर और ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। ऐसा करने से इसका स्वाद ज्यादा निखर आएगा। अब हमें क्या करना है तो जनाब, अब हम लेंगे हमारी लीची। सारी लीची को अच्छे से धो लीजिए। फिर हमें लीची का छिलका हटाना है। उसके बाद क्या करें? तो भाई, लीची को सिर्फ एक चीरा मींस कट लगाकर उसमें से हमें धीरे से बीज निकालना है। ध्यान रहे कि लीची कहीं फट ना जाए, अदरवाइज उसके अंदर स्टफिंग को भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सारी लीची को हमने एक कट लगाकर उसके अंदर से बीज तो निकाल दिए हैं। अब आप लीजिए एक पाइपिंग बैग और उस पाइपिंग बैग में आप मैंगो पल्प और छेना वाला मिश्रण भर दीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी उंगलियों से भी लीची के अंदर स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अब एक एक करके सारी लीची के अंदर स्टफिंग भर दीजिए। अब आगे क्या करें? तो भाई जरा रुकिए, पहले आप सुनिए हमारे शो का अगला गाना। तब तक मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्टफ्ड मैंगो लीची अब ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन लेकिन लेकिन इसे डेकोरेट करना फिलहाल बाकी है। अब आप लीजिए एक सुंदर सी प्लेट और उस प्लेट में सारी स्टफ लीची को अगल बगल में रख दीजिए। फिर आप सोक्ड पिस्ता के पतले टुकड़ों को उस पे सजाइए, साथ ही केसर के धागों को भी बड़ी नजाकत से डालिए। आप चाहे तो इसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। भाई मुझ में उतना पेशेंस तो है नहीं, इसलिए मैं तो इसे बनते ही अपने मुंह में स्वाहा करूंगी। आहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। वैसे क्या आप जानते हैं कि लीची में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे हमारे बाल और स्किन को पोषण मिलता है। तो अपनी ब्यूटी रेजिम में आप लीची को जरूर शामिल कीजिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे बिहार के अलावा झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल और असम में भी लीची उगाई जाती है। तो झटपट मार्केट हो आइए और स्टफ्ड मैंगो लीची बनाने के लिए रसीली लीची को अपने घर ले ही आइए। वैसे बिहार की शाही लीची तो वर्ल्ड फेमस है, तो क्यों ना इस वर्ल्ड फेमस लीची से हम स्वीट और टैंगी स्टफ्ड मैंगो लीची को बनाएं और अपने साथ अपनों को भी खिलाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल समाप्त हो गया था, जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर माता पार्वती की स्तुति की, उसमें देवता भी शामिल थे। जगत कल्याण के लिए माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। भगवान शिव जी ने भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी और मिली हुई भिक्षा के माध्यम से धरती पर सभी जीवों में अन्न का बंटवारा किया। इसलिए भोजन के पहले और अंत में माता अन्नपूर्णा का स्मरण करना बेहद शुभ माना जाता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही खाना अपनी थाली में ले और एक्स्ट्रा खाना अपनों के साथ मिल बांटकर खुशी से खाएं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है लीची मैंगो और छेना। लीची उगाने में अव्वल है बिहार, इसका टेस्ट अनोखा सा, खुश हुआ संसार। मैंगो के साथ जब मिल गया छेना, तब चहक सी उठी मेरे मन की मैना। मिश्री की मौजूदगी ने बढ़ाई इसकी मिठास, पिस्ता और केसर से मिठाई बनी खास। जरूर खाकर देखिए ये लाजवाब स्वीट, इसका टेस्ट है ऐसा कि गर्मी को कर दे बीट। लीची के उत्पादन में बिहार है अग्रेसर, और मिठाई को सजाने साथ आया केसर। स्टफ्ड मैंगो लीची का लाजवाब स्वाद जुबान के साथ ही आपके दिल को भी रहेगा याद। अपनों संग बांटो होम मेड मिठाई, अपनापन जताकर करो दोस्ती की कमाई। आचार्य 90 FM मीन्स योर ओन रेडियो, स्वाद का जायका निभाती हूँ फ्रॉम अवर स्टूडियो। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, स्वाद का जायका लाएगा आपके किचन में बहार। हमें इंतजार है आपकी रेसिपीज का, सुन रहे हैं ना ऑडियंस। सराहना होगी आपकी भी जब मिलेगा हमें आपका गाइडेंस। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। इस रेसिपी का नाम है लीची पुदीना शिकंजी। शिकंजी एक फेमस और रिफ्रेशिंग भारतीय पेय है। ये ऑर्डिनरी नींबू पानी से अलग होता है क्योंकि इसमें नींबू और चीनी के साथ साथ कई खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे खट्टा मीठा और चटपटा बनाते हैं। यूपी में गर्मियों के सीजन में गर्म हवा मींस लू से बचने के लिए और इंस्टेंट एनर्जी को पाने के लिए शिकंजी को एज अ देसी एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल किया जाता है। शिकंजी पीने से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, साथ ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसे ज्यादातर दोपहर के टाइम में पीना अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब हम लीची पुदीना शिकंजी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। लीची पुदीना शिकंजी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फ्रेश और पूरी तरह से पकी हुई लीची 8 से 10, पानी 2 ग्लास, पीसी हुई चीनी 2 बड़े चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच या स्वादानुसार, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नींबू 1, पुदीना 10-12 पत्ते, बर्फ 6 टुकड़े, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लीची को अच्छे से धो लेंगे, फिर हम लीची का छिलका और अंदर का बीज भी हटाएंगे। उसके बाद पुदीना के पत्तों को भी साफ पानी से धो लेना है। अब आगे सुनिए। एक ब्लेंडर लीजिए, उस ब्लेंडर में हम डालेंगे छील कर रखी हुई लीची। फिर उस लीची में हम ऐड करेंगे पुदीना के कुछ पत्ते। इससे क्या होगा कि पुदीना का रिफ्रेशिंग टेस्ट इस शिकंजी में स्वाद का जायका ऐड करेगा। अब इसमें डालिए थोड़ा सा पानी। आप चाहे तो इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ठंडा चाहिए तो। वैसे मुझे पर्सनली बिना बर्फ वाले मॉकटेल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे वो कौन सा मॉकटेल है जिसे आप किसी भी सीजन में पीने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं? मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। ब्लेंडर में डाली चीजों को हमें अब मिक्स करना है, इसलिए आप इसका ढक्कन लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। अब ब्लेंडर का ढक्कन खोलिए, फिर उसमें बचा हुआ पानी, काला नमक और नींबू का रस, इन सब चीजों को डालिए। साथ ही भुना जीरा पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर हमने सारा पानी शुरुआत में ही ब्लेंडर में डालकर बाकी चीजों के साथ मिक्स किया तो हमारी लीची पुदीना शिकंजी अच्छे से मिक्स नहीं होगी। पानी एक तरफ और लीची पुदीना के टुकड़े दूसरी तरफ, ऐसी टाइटैनिक स्टाइल शिकंजी हमें उस ब्लेंडर में दिखाई देगी, इसलिए बी केयरफुल। हड़बड़ी में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारा आसान सा काम मुश्किल में बदल जाए। अब हमारी लीची पुदीना शिकंजी सर्व करने के लिए तैयार है और इसका लुफ्त उठाने हम कब से बेकरार है। लेकिन लेकिन लेकिन अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। इसके लिए हमें चाहिए 2 लंबे वाले कांच के ग्लास। एक प्लेट में आप लीजिए 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच शक्कर। फिर क्या करें? तो भाई उन ग्लास के किनारों को थोड़ा पानी लगाकर उन्हें उस नमक और शक्कर वाली प्लेट पर पलट दीजिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल लेयर बनेगी जो हमारी लीची पुदीना शिकंजी को प्रोफेशनल लुक देगी। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? अब हम उन ग्लास को सीधा खड़ा करेंगे, फिर एकदम संभाल कर एक नजाकत से तैयार शिकंजी को उन ग्लास में डालना है। इसे और सुंदर बनाने के लिए उस शिकंजी पर पुदीना के 2-3 पत्ते रख दीजिए। क्या बात! फिर अपने मोबाइल कैमरा में इस लीची पुदीना शिकंजी की छवि को कैप्चर कीजिए। उसके बाद अपनों के साथ बैठकर एकदम आराम से इस लीची पुदीना शिकंजी का लुफ्त उठाइए।
आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची पुदीना शिकंजी के लिए पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है तसल्ली वाली शिकंजी। झुलसती सी गर्मी में हमें देने तसल्ली, घर में बननी ही चाहिए लीची पुदीना शिकंजी। लीची और पुदीना का ये रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन, मतलब शिकंजी के रूप में गर्मी भगाने वाला इनोवेशन। तेज गर्मी को जब देनी हो मात, तब हम थामेंगे देसी नुस्खे का हाथ। आसान से देसी नुस्खे हमें देंगे जोश, लीची पुदीना शिकंजी पीकर होंगे आप मदहोश। हमारे देसी खाने में है सेहत से जुड़े कई राज। आचार्य 90 FM के ऑडियंस जी, क्या आप सुन ले हम कुछ साज़।

आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई मौसम को बदलते देर नहीं लगती, झुलसती गर्मी वाला मौसम बस अब बदलने ही वाला है और फिर रेनी सीजन स्पेशल रेसिपीज को हमें बनाना है। मौसम के अलग अलग रूपों को एंजॉय करने के लिए लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाना हमें जरूर खाना चाहिए और उस टेस्टी खाने के साथ कुछ सुरीले साज भी बजने ही चाहिए। इसलिए आचार्य 90 FM इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाई स्टफ्ड मैंगो लीची, जिसमें छेना मींस फ्रेश पनीर और मैंगो पल्प को लीची के अंदर भरकर हमने एक लजीज मिठाई बनाई। स्टफ्ड मैंगो लीची का रूप निखारने के लिए हमने उस पर पिस्ता और केसर वाला डेकोरेशन भी किया। किया कि नहीं? जी जरूर किया। उसके बाद हमने बनाई यूपी की फेमस शिकंजी, जिसका नाम था लीची पुदीना शिकंजी। रसीली लीची और पुदीना की परफेक्ट जोड़ी से हमने इस गर्मी के मौसम को थोड़ा सा इजी बनाने की कामयाब कोशिश की है कि नहीं? अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर नई शुरुआत से एक कहानी शुरू होती है। कहानी और रेसिपी का ये संगम अनोखा, मतलब स्वाद और जायके का मिलाप मींस सलोखा। बेसब्री से कीजिए आप सोमवार और शुक्रवार का इंतजार। आपके संग रेसिपीज को शेयर करने हम हैं एकदम बेकरार। खाने और गाने का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आप और हम हैं लजीज खाने के शौकीन और हमारे दोबारा मिलने का मुझे है पूरा यकीन। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्जे शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों की गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है, और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आज़ादी के पहले की। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आज़ादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग एक खून, एक आजादी की दास्तां। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी, और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कंधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे, और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घराने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की, और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने। सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरिया ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कांधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कांधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेट हो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और दो छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, अरे नेताजी, आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने दो लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम, रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी, और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली, हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा, अपने लिए नहीं डर लगता, पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है।
आनंद धीरे से बोला, अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हिमा मुस्कुराई, तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती, तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे। अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने। अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, या अल्लाह क्या हुआ। अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा, अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना। अशफाक चुप रहा। उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहते। अशफाक ने मां का हाथ पकड़ा, अम्मी अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा, हम कैसे चैन से जी पाएंगे, हम कैसे खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे, हम कैसे अपनी जरूरतों का सामान आसानी से ले पाएंगे, हम कैसे आसानी से घूम सकेंगे, कहीं आ जा सकेंगे। अशफाक जब ये कह रहा था तो उसकी अम्मी रो पड़ी और रोते रोते कहा, तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो। अमित की दुनिया अलग थी। उसके घर में हर वक्त परेशानी रहती थी। माँ राशन का हिसाब करती, छोटे भाई फीस के लिए रोते, पिता खांसी में खून थूकते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई नौकरी देख ले। अमित चुप रहा। उसके पास एक तरफ घर था और दूसरी तरफ देश। उस रात आनंद ने पूछा, तू टेंशन में लग रहा है। अमित ने बस एक बात कही, हर आदमी को आजादी चाहिए, लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

सो स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में ज़रूरतों का सामान भी ज़्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियाँ जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज़ कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आज़ादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आज़ादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, गुप्त मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उन पे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखे गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा, अशफाक का खून खोल उठा। उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी। वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद, आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हां, मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना, किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी। सब भागने लगे, अशफाक पीछे रह गया। एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी, तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली।

आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद, शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो? हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा, क्रांति में लोग कहानियां नहीं लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी, तुम लौटोगे। लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई। उसके घर में मातम सा छा गया। मां पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया, नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो? लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका, तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून तुकते हुए हंस पड़ा, फिर इतना डरते क्यों हो हमसे? ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आजादी। और अब धीरे धीरे वो आजादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद, अमित और अशफाक को सिवाय आजादी के दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आजादी मिल सके, युवाओं के दिल में आजादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले। चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक! आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा। तभी अमित को भी गोली लगी, वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग! आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले आनंद, आनंद भाग! और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हेमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में तीन माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी।
अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा हेमा ने तो कभी शादी ही नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम।

वंदे मातरम। तो दोस्तों, इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे तीन रंग एक खून एक आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि कैसे तीन दोस्तों के लिए सिर्फ आजादी ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती। और इसी हद को पार कर चुके थे तीन दोस्त, अमन, अशफाक और अमित। और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर शहीद हो गए, हंसकर मौत को स्वीकारा। ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके, जमीन पर गिर गए, छातियों पर गोलियां खाते रहे।

सो दोस्तों हम सुन रहे थे ये कहानी है, एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होंगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।

एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस जी? ऑल गुड ना भाई? सब अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है और सुहाना सा सावन अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। वैसे त्योहार और खुशियां, ये दो बातें आपस में जुड़ी हुई हैं और हमारे आचार्य 90 एफएम के इस शानदार स्टूडियो में हमने सावन स्पेशल सेलिब्रेशन को ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अर्ज किया है, सावन की लड़ी ने मिटाई धरती की तृष्णा, जन्माष्टमी के अवसर पर प्रकट हुए कृष्णा, इस बार हम लगाएंगे भगवान श्री कृष्ण को भोग, मनाएंगे जन्माष्टमी धनिया पंजीरी बनाने का योग, नटखट कान्हा के मुखड़े का ग्लो जैसे सुनहरी सी धूप और साथ में रेनबो, हेल्दी खाना खाकर पाए हम स्वीकृति, खाने से ही जुड़ी हमारी भारतीय संस्कृति। आचार्य 90 एफएम को अब कर भी दीजिए चूज, यहाँ पर मिलेगी आपको एंटरटेनमेंट ह्यूज। ऑडियंस जी, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी मुख्य रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान को चढ़ाया जाने वाला एक पवित्र प्रसाद है। ये भुने हुए धनिया पाउडर, देसी घी, मखाना, ड्राई फ्रूट्स और चीनी के बूरे से बनता है। ये एकदम टेस्टी होने के साथ साथ पाचन और सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। तो भाई, जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हम इसे बना ही लेते हैं। धनिया पंजीरी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: साबुत धनिया एक कटोरी, देसी घी आधा कटोरी, चीनी का बूरा या पीसी हुई चीनी 3/4 कटोरी, काजू और बादाम 5-5, किशमिश 2 बड़े चम्मच, सूखा नारियल आधा अप्रोक्सीमेटली, मखाने आधा कटोरी, इलायची 4-5 और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपकी मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम साबुत धनिया का पाउडर बनाएंगे। मिक्सर के जार में इसे डालकर हम धनिया का पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद हम सूखे नारियल को कद्दूकस करेंगे। हमें अप्रोक्सीमेटली 2 बड़े चम्मच कद्दूकस

लेंगे एक चम्मच देसी घी। हमें धीमी आंच पर इसे गर्म करना है। उस गर्म घी में हम डालेंगे धनिया का पाउडर। इसे भी धीमी आंच पर हम लगभग 2-3 मिनट तक भूनेंगे। 2-3 मिनट के बाद उसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। तब उस भुने हुए धनिया को हम एक बर्तन में निकालेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का भून लेंगे। लगभग 2-3 मिनट तक हमें इन्हें चम्मच से चलाना है। इन्हें भी हम अलग से निकालेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने धनिया पाउडर और ड्राई फ्रूट्स को घी में डालकर भून लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बचे हुए घी को हम गरम करेंगे, उसमें मखाना डालकर हमें भूनना है। लगभग 3-4 मिनट तक हमें इसे चलाना है। फिर एक बड़ी सी प्लेट में हम सारे मखाना को रखेंगे। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट के बाद ये ठंडे हो जाएंगे। फिर हम इन्हें डालेंगे मिक्सर के जार में। पल्स मोड पर मिक्सर चलाते हुए हमें इसे पीसना है। हमें इन मखाना को दरदरा मींस मोटा मोटा पीसना है। ध्यान रहे कि इसका फाइन पाउडर ना बने। अब हम लेंगे एक बड़ा बर्तन। सभी भुनी हुई सामग्री को हमें इसमें डालना है, मतलब धनिया पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, मखाना, ये सब। इसके साथ हम ऐड करेंगे इलायची।

इलायची पाउडर को। एक चम्मच की मदद से हमें इन सारी चीजों को मिक्स करना है। फिर इस मिश्रण में हम डालेंगे चीनी का पाउडर, इसे भी एकदम अच्छे से मिलाइए। अब हम इसमें मिलाएंगे ढेर सारा प्यार। इस प्रकार हमारे प्यारे ऑडियंस के मन की भावनाएं भी इसमें मिल गई हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी धनिया पंजीरी अब हो गई है तैयार और इसे टेस्ट करने हमारे ऑडियंस जी हो रहे हैं कितने बेकरार। लेकिन आप जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो। पहले हमारे नटखट कान्हा को इस धनिया पंजीरी का भोग तो लगाने दीजिए। इसके लिए हमें चाहिए एक प्यारी सी कटोरी। उस कटोरी में हम एकदम प्यार और सात्विक भाव से डालेंगे धनिया पंजीरी। फिर उसकी सात्विकता को और बढ़ाने के लिए हम उस पर रखेंगे छोटा सा तुलसी का दल। भाई वाह, इस धनिया पंजीरी की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। अब हम इस धनिया पंजीरी का भोग हमारे नटखट कान्हा को लगाते हैं। उसके बाद क्या करें? तो भाई उसके बाद अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी धनिया पंजीरी का लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं, ये धनिया पेट और पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। धनिया पंजीरी में मौजूद ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ड्राई फ्रूट से हमें पोषण भी मिलता है। वैसे व्रत के दौरान महसूस होने वाली कमजोरी को धनिया पंजीरी काफी हद तक दूर करती है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। वैसे धनिया पंजीरी एक ट्रेडिशनल भारतीय प्रसाद है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से यूपी, विशेषकर ब्रज में हुई थी। वहाँ के प्राचीन धार्मिक और आयुर्वेदिक परंपराओं से ये धनिया पंजीरी की रेसिपी जुड़ी हुई है। भगवान लड्डू गोपाल मीन्स बाल कृष्ण को विशेष भोग के रूप में धनिया पंजीरी अर्पित की जाती है। जन्माष्टमी के समय हमारे प्यारे माखन चोर कान्हा को माखन मिश्री के साथ धनिया पंजीरी का प्रसाद चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। कहते हैं कि बारिश के मौसम में भगवान श्री कृष्ण जब अपने सारे सखाओं को लेकर गाय चराने ले जाते थे, तब यशोदा मैया उन्हें ऐसा पौष्टिक और ऊर्जावान खाना देती थी जो लंबे समय तक खराब ना हो। माँ चाहे जन्म देने वाली हो या फिर पाल पोस कर बड़ा करने वाली, माँ तो माँ ही है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस धनिया पंजीरी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है माखन चोर का भोग। धनिया पंजीरी का लगाने भोग, धनिया और मेवे का किया उपयोग। पारंपरिक खाने से होंगे लाभ, इसके लिए थामिए आयुर्वेद का हाथ। माखन चोर को पसंद धनिया पंजीरी और तुलसी के बीज को कहते हैं मंजीरी। धनिया पंजीरी में डाला शक्कर का पाउडर, इसे खाकर हम फील करेंगे प्राउडर। ऐसा भोग का प्रसाद होता है हेल्दी। हमारी भारतीय संस्कृति है कितनी वेल्दी। इसमें ऐड किया हमने सूखा मेवा, नटखट कान्हा के लिए हमारी छोटी सी सेवा। शरारती कान्हा को कहते हैं नटखट। बना ही लीजिए धनिया पंजीरी अब एकदम फटाफट। हमारे कान्हा का हर रूप है अनोखा। आचार्य 90 FM मीन्स खुशियों का झरोखा। झरोखे में से निकला स्वाद का जायका। हमारे प्यारे ऑडियंस की खिदमत में हाजिर इस शो की नायिका। नायिका का नाम भारतीय सीमा। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, आप जाइए कहीं ना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। हमारी नेक्स्ट रेसिपी का नाम है गोपाल काला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दही हंडी के उत्सव के दौरान बनाया जाने वाला पवित्र और पारंपरिक प्रसाद, जिसे गोपाल काला नाम से जाना जाता है, उसे आज हम इस शो में बनाएंगे। गोपाल मीन्स श्री कृष्ण और काला मीन्स विभिन्न खाद्य पदार्थों का मिश्रण, जैसे कि दही, पोहा, खीरा और कुछ फल। ये एक हेल्दी रेसिपी है। अब हम इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी लेते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग है, जिसे श्री कृष्ण और उनके बाल सखा मीन्स ग्वालों के प्रेम और समानता का प्रतीक माना जाता है। इससे हमें सामूहिकता का संदेश मिलता है, क्योंकि वृंदावन के सारे सखा मिलकर अपनी अपनी पोटली से भोजन निकालकर एक साथ मिलाते थे, जिसे काला कहा गया है। हमारे महाराष्ट्र में दही हांडी फोड़ने के बाद प्रसाद के रूप में इसी गोपाल काला का वितरण किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं गोपाल काला की रेसिपी की ओर। गोपाल काला बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पोहा एक कटोरी, ताजा दही आधा कटोरी, ककड़ी मतलब खीरा एक छोटी सी, मूंगफली के दाने 2 चम्मच, अदरक 1 चम्मच मींस अप्रोक्सीमेटली 1 इंच का टुकड़ा, ताजा नारियल 1 टुकड़ा, हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच, अनार के दाने 1/2 कटोरी, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ। फिर हमें तड़का लगाने की सामग्री चाहिए, जैसे कि देसी घी 1 बड़ा चम्मच, राई 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, हरी मिर्च 1 छोटी, कड़ी पत्ता 5-6 पत्ते, हींग 1 चुटकी। अब हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले पोहा अच्छे से धो लीजिए, फिर हमें उसका पानी निकाल देना है। यहाँ पर हम छलनी को यूज कर रहे हैं। फिर हमें खीरा यानी कि ककड़ी के बारीक टुकड़े करने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर ककड़ी कड़वी हो तो उसे इस्तेमाल ना करें, उस कड़वी ककड़ी को आप फेंक दीजिए। रेगुलर टेस्ट वाली ककड़ी को हमें इस्तेमाल करना है। फिर हमें ताजा नारियल को कद्दूकस करना है। लगभग 1 बड़ा चम्मच भर के ताजा नारियल हमें चाहिए। उसके बाद हम अदरक को भी कद्दूकस कर लेंगे। फिर हरा धनिया हम बारीक काट लेंगे। अब हम गोपाल काला की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। भिगोए हुए पोहा में हम मिलाएंगे ताजा दही। इन सब चीजों को हम एक बर्तन में मिक्स करते हैं। सबसे पहले दही और पोहा को हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। फिर उसमें हम बाकी सामग्री भी डालेंगे, मींस ककड़ी के टुकड़े, मूंगफली, ताजा नारियल, धनिया पत्ता, अदरक और नमक। इन सबको हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। इसमें हम अब तड़का लगाएंगे। एक तड़का पैन में हम गरम करेंगे देसी घी। उसमें सबसे पहले हम डालेंगे सरसों मतलब राई। राई चटकने के बाद हम डालेंगे जीरा। फिर हम डालेंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची। अब स्वाद का जायका ऐड करने के लिए हम डालेंगे चुटकी भर हींग। भाई वाह, इस खुशबू से तो मेरा दिल एकदम खुश हुआ। अब इस तड़के को हम बर्तन में तैयार मिश्रण पर डालेंगे। ऐसी जबरदस्त तैयारी देखकर कोई भी इसे खाने के लिए बेचैन ही होगा। यकीन ना आए तो इसे बनाकर तो देखिए जनाब। अब चम्मच की मदद से इन सब चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। फिर एक सुंदर सी कटोरी में एकदम सात्विक भाव से इस गोपाल काला को निकालिए।
उसकी सुंदरता को और ज्यादा निखारने के लिए हम उस पर अनार के लाल दाने डालेंगे। आहा, क्या डेकोरेशन है। अब इस सुंदर से गोपाल काला पर एक तुलसी पत्र को भी रखिए। फिर बड़ी श्रद्धा से इस सात्विक गोपाल काला का भोग हमारे प्यारे नटखट कान्हा को लगाइए। उसके बाद क्या, तो भाई अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी और हेल्दी गोपाल काला का लुफ्त बड़े मजे से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। इस गोपाल काला की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है गोपाल काला वाले कान्हा। कान्हा की लीला से खुश हुआ गोकुल। गोपाल काला का सेवन सेहत के लिए अनुकूल। गोपाल काला में डाला हेल्दी वाला पोहा। दुनिया में अब मनवाएंगे भारतीय संस्कृति का लोहा। पोहा में मिलाया ताजा ताजा दही। कान्हा के संग ग्वालों की टोली सही। पोहा और दही संग नारियल ताजा। गोविंदा आला रे आला, बजाओ बैंड बाजा। इस मिश्रण में डाला थोड़ा सा नमक। कान्हा की मुस्कान से दुनिया में छाई चमक। गोपाल काला की खूबसूरती को बढ़ाए अनार। जन्माष्टमी के अवसर पर स्वाद का जायका लाया बहार। इसके साथ डाला जब धनिया हरा। जय श्री कृष्ण का लगाइए नारा। आया कान्हा और मच गई धूम। खुश हुआ आसमान और गोपियां गई झूम। बनाइए गोपाल काला करके कान्हा का स्वागत। हेल्दी खाना खाने की अब डाल ही लीजिए आदत। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड में हमने सबसे पहले बनाई एक स्पेशल रेसिपी जिसका नाम था धनिया पंजीरी। धनिया पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, मखाना को देसी घी में मिक्स करके हमने शक्कर की मिठास मिलाई। इसे और हेल्दी बनाने के लिए हमने उसमें ताजा नारियल और खुशबूदार इलायची भी डाली। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर को हमने एकदम पारंपरिक तरीके से सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं? जी बिल्कुल किया। हमारे नटखट कान्हा जी के

प्रति हमारे मन की श्रद्धा को दिखाने के लिए हमने एक और स्पेशल रेसिपी बनाई। गोपालकला नाम की इस सात्विक रेसिपी में हमने भिगोया हुआ पोहा, दही, खीरा और अनार को मिक्स किया। फिर देसी घी का तड़का लगाकर हमने गोपालकला को और ज्यादा टेस्टी बनाया। फिर उस पर तुलसी का पत्ता रखकर हमने गोपालकला की सात्विकता को बढ़ाया। इस प्रकार हमने स्वाद का जायका शो पर जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया। अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें बताइए। लेकिन उसके लिए आपके फेवरेट आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की होगी। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

कचहरी 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस? अरे भाई, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष को देखा कि नहीं? वैसे आप सबकी मौजूदगी से हमारे स्वाद का जायका शो पर सतरंगी खुशियों का माहौल सा ऑलरेडी छा चुका है। अर्ज किया है बारिश का मौसम और ऑडियंस का साथ, मतलब जैसे आसमान में इंद्रधनुष और अपनेपन की बात। खुशियों का पैगाम लेकर आया अगस्त। मनोरंजन के लिए आचार्य 90 FM का परिवार मींस आप ही हो समस्त। स्वाद का जायका की होस्ट भारतीय सीमा टेंशन की स्पीड को कर देगी धीमा। अच्छा खाना खाकर हो जाइए खुश, बेकार वाले टेंशन को दूर कीजिए पुश। भारत की तरक्की से खुश हुआ आसमान, आचार्य 90 FM मतलब दोस्ती की पहचान। हाल ही में मारा हमने शानदार 4, हर कोई मांगे आचार्य 90 FM मोर। अब ना होगा मुमकिन हमें करना इग्नोर, नाउ वी आर बेटर देन नेवर बिफोर। आचार्य 90 FM मतलब परफेक्ट एंटरटेनमेंट, खाने और गाने की यहाँ पर एंजॉयमेंट। पहली रेसिपी का नाम है शीर खुरमा, खाकर इसे अब खुश होंगे हमारे सूरमा। ईद की बधाई का लेकर संदेश, पधारे हैं और भी त्योहार लेकर खुशियों का आदेश। आचार्य 90 FM के आप संग है खास ताल्लुकात, टेस्टी शीर खुरमा से होगी इस शो की शुरुआत। तो जनाब, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है शीर खुरमा। भाई, ईद को मनाने के लिए शीर खुरमा बनाया जाता है। हैदराबादी और लखनवी खाद्य संस्कृति में शीर खुरमा का एक अलग और खास स्थान है। ये एक ट्रेडिशनल और बेहद टेस्टी मिठाई है। इसे मेनली दूध, सेवई और खजूर इस्तेमाल करके बनाया जाता है। शीर मींस दूध और खुरमा मींस खजूर होता है, और इन दोनों को मिलाकर बनता है शीर खुरमा। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चलिए अब हम इस ट्रेडिशनल शीर खुरमा को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फुल क्रीम दूध 1.5 लीटर, बारीक सेवई 50 से 60 ग्राम, इसे हाथ से तोड़कर छोटा करना है, खजूर 5 या 6, इसे रात भर पानी में भिगोकर पतला और लंबा काटना है, बादाम 10-12, इसे भी रात भर पानी में भिगोकर छिलका हटाना है, फिर लंबे टुकड़ों में काटना है, काजू 10-12 बारीक कटे हुए, फिर हमें चाहिए पिस्ता 10-12 बारीक कटे हुए, चिरौंजी मींस चारोली 2 बड़े चम्मच, किशमिश 1 बड़ा चम्मच, चीनी 1/2 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 3-4 बड़े चम्मच, हरी इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, केसर के धागे 10 से 12, इन्हें लगभग 1 चम्मच गरम दूध में भिगोकर रखना है, केवड़ा जल या गुलाब जल 1 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है, और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपकी मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दूध को उबालकर गाढ़ा करना है। इसके लिए हमें चाहिए मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उस कढ़ाई में हमें दूध को गर्म करना है। जैसे ही उस दूध में उबाल आए, आप गैस की आंच को धीमा कर देंगे। इसे घटाकर हमें 1/3 करना है। लगभग 1/2 घंटे तक हमें दूध को पकाना है। इस दौरान करछी की मदद से हम दूध को चलाते रहेंगे। ऐसा करने से मलाई उस बर्तन के किनारों पर जमा नहीं होगी। उफ, इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।
तब तक आप एक गाना सुन लीजिए।

बाय। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन। उस पैन में लगभग 1 चम्मच घी डालकर हमें उसे गर्म करना है। फिर उसमें कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली और किशमिश डालकर हमें भूनना है। लगभग 2-3 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। जब ये हल्के सुनहरे रंग के हो जाए तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। फिर उसी पैन में बचा हुआ घी डालकर हम भूनेंगे बारीक सेवई। इसे भी लगभग 2-3 मिनट तक हमें भून लेना है। मींस धीमी आंच पर जब इसकी खुशबू आए तब तक। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने दूध को उबालकर गाढ़ा कर लिया था। अब हम उसमें भुनी हुई सेवइयां और खजूर ऐड करेंगे। इसे लगभग 5-7 मिनट तक पकाना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े और खुशबूदार इलायची पाउडर। भाई वाह, इसे लगभग 5 मिनट तक चलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है। अब गैस को बंद कर दीजिए। इस प्रकार हमारा स्वादिष्ट शीर खुरमा अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हम हो रहे हैं एकदम बेकरार। तो भाई अब हमें चाहिए कांच की एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में बड़ी नजाकत से हम डालेंगे शीर खुरमा। क्या बात, दूध में से झलकती हुई सेवइयां और साथ में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि सावन के मौसम में खिली खिली सी धूप। अब अपनों के साथ मिल बांट कर इस शीर खुरमा का लुफ्त एकदम तसल्ली से उठाइए। ऐसा करने से इस शीर खुरमा का टेस्ट और ज्यादा अच्छा लगता है। यकीन ना आए तो एक बार आप इसे ट्राई तो कीजिए जनाब। और इसके साथ आप सुनिए हमारे आचार्य 90 FM का अगला वाला गाना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लजीज शीर खुरमा की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है उम्मीदों वाली ईद। शीर खुरमा खाकर मनाइए ईद, अपनापन जताने की हमें है उम्मीद। ईद पर घर पे बनी मीठी सेवैया, हम ही हैं खुद अपने लाइफ के खेवैया। सेवैया में मिलाइए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, त्योहारों में छिपे हैं अपनेपन के रूट्स। केसर से पाया इस रेसिपी ने रंग सुनहरा, केसर से पाया इस रेसिपी ने रंग सुनहरा। खिलाकर शीर खुरमा दोस्ती को कीजिए गहरा। खाना खिलाकर जब गहरी होगी दोस्ती, तब कभी कभी होगी हल्की फुल्की मस्ती। अपनापन दिखाने का त्योहार वाला टाइम। सब्सक्राइब कीजिए आचार्य 90 FM वंस इन अ लाइफ टाइम। भाई, त्योहारों को मनाना और लजीज खाना खाकर अपनापन जताना, ये सिलसिला तो अब चलता ही रहेगा। और यही अपनापन जताने के लिए आपको स्वाद का जायका से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। इसलिए हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। हमारे महाराष्ट्र, कोंकण और तटीय क्षेत्रों में श्रावण मास की पूर्णिमा को नारली पूर्णिमा मींस नारियल पूर्णिमा इस पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन मछुआरा समुदाय समुद्र देवता की पूजा करके उन्हें नारियल अर्पित करता है और मॉनसून के बाद सुरक्षित तरीके से मछली पकड़ने के लिए नए सत्र की शुरुआत करता है। समुद्र देवता को शांत रहने और आपदाओं से रक्षा करने की प्रार्थना इस दौरान की जाती है। रक्षाबंधन के साथ ही मनाया जाने वाला ये पर्व भाई बहन के प्रेम को भी दर्शाता है। इस दौरान पारंपरिक गीत, नृत्य और पकवानों का आनंद लिया जाता है। इन पकवानों में विशेषकर नारियल वाले चावल को बनाया और खिलाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन बनने वाला ये नारली भात मींस नारियल वाले मीठे चावल, ताजा नारियल, गुड़, चीनी और सुगंधित मसालों से बनता है। इसे बनाना बेहद सरल और आसान है। भाई, जरूरी नहीं कि आप इसे सिर्फ नारियल पूर्णिमा के दिन ही बनाएं। किसी और जश्न के दौरान भी आप इस ट्रेडिशनल नारियल के चावल की यमी रेसिपी को जरूर बना सकते हैं। ये रेसिपी खास तौर पर अपनी बनावट और स्वाद के लिए जानी जाती है। तो भाई, शुभ काम में देरी क्यों? हमारे आज के इस त्योहार स्पेशल एपिसोड में हम नारियल के चावल मींस नारली भात को बना ही देते हैं। नारली भात बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल एक कटोरी, ताजा नारियल एक, नमक आधा चम्मच या स्वाद के अनुसार, ब्राउन गुड़ पौना कटोरी, केसर के धागे 10-12, लौंग 9 या 10, देसी घी 4 बड़े चम्मच, पानी 2 कटोरी, मिक्स ड्राई फ्रूट्स पाव कटोरी। मिक्स ड्राई फ्रूट्स मींस काजू।

लेना है। चावल को पानी से धोने के बाद उसका पानी हमें हटाना है। उसके बाद लगभग 45 मिनट के लिए इसे अलग से रख दीजिए। इस तरह से भिगोकर रखे हुए चावल पकने के बाद बड़े और खिले खिले से दिखते हैं और इस वजह से हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा प्रोफेशनल टाइप हो जाएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हम नारळी भात बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब हमें ब्राउन गुड़ को भी कद्दूकस कर लेना है। फिर एक पैन में हम गरम करेंगे देसी घी। उस देसी घी को हमें लो फ्लेम पर गरम करना है। अब हम उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। लगभग 3-4 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। फिर इन ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उसमें धीमी आंच पर हम गरम करेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। जब वो घी गरम हो जाए तब हम उसमें लौंग डालेंगे। इसे 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें भूनना है। जब लौंग फूल जाएगी तब उसमें से खुशबू आने लगेगी। फिर हम उसमें ऐड करेंगे भिगो कर रखे हुए बासमती चावल और थोड़ा सा नमक भी। इसे एक बड़े चम्मच की मदद से हमें मिक्स करना है। उसके बाद उन चावलों में हम डालेंगे गुनगुना पानी और केसर के धागे। फिर हम गैस की फ्लेम को तेज करेंगे। जैसे ही चावल में तेज उबाल आएगा तब हम गैस की फ्लेम को धीमा करेंगे। थोड़ी देर के लिए उन चावलों के ऊपर हम ढक्कन रखकर इसे पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद चावल सारा पानी सोख कर पूरी तरह से पक जाएंगे। इस बीच एक छोटे पैन में गुड़ और नारियल डालकर उसे मिक्स कीजिए। हमें इसे धीमी आंच पर पकाना है। थोड़ी देर बाद गुड़ पिघलना शुरू होगा। आहा, क्या बात! नारियल और गुड़ के पकने की खुशबू से सारा घर महक उठेगा और घर के लोगों के टेस्ट बर्ड्स अब एक्टिव मोड की तरफ प्रस्थान करने लगेंगे। मींस सबको उत्सुकता होगी कि भाई हो क्या रहा है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भाई, पके हुए गुड़ और नारियल के इस मिश्रण को हम चावल में मिक्स करेंगे। इस दौरान आप ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे नहीं। एकदम हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे मिक्स करने के लिए काटा चम्मच को यूज कर सकते हैं। हम इस मिश्रण को ढककर धीमी आंच पर लगभग 4-5 मिनट तक पकाएंगे। जनाब जरा रुकिए तो, मेरी बात को सुनिए तो, इतनी भी क्या बेकरारी भाई। अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम डालेंगे तैयार नारियल का मीठा चावल। इसे सजाने के लिए उसके ऊपर हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को फैला देंगे। हमारे महाराष्ट्र का नारियल चावल मींस नारळी भात त्योहारों के व्यंजन के रूप में अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हमारे प्यारे ऑडियंस जी हैं एकदम बेकरार। तो भाई, देर किस बात की, आप नीचे जमीन पर बैठ जाइए। अपने साफ और धुले हाथों से इस गर्मा गर्म नारियल वाले चावल का एक निवाला उठाइए। अपनी उंगलियों से उस चावल के टेम्परेचर और टेक्सचर को फील कीजिए। फिर एकदम नजाकत से, एकदम आराम से उस निवाले को अपने मुंह में डालिए। उस चावल का अरोमा और उसका टेस्ट आपके चेहरे पर मिलियन डॉलर वाली स्माइल को जरूर लाएगा। यकीन ना आए तो इस नारळी भात को आप एक बार बनाकर तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसे बनाकर और अपनों के साथ मिल बांट कर खाने से आप एकदम खुश हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस नारळी भात की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है नारियल वाले मीठे चावल। रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाई में डाला नारियल। त्योहार को जरूर मनाएंगे,
शैतान भाई और बहन अड़ियल। आया पूर्णिमा का पर्व ये पावन, खुशियों को मनाने बनाया हमने मीठा नारियल चावल। नारियल का साथ देने हमने डाला गुड़, इसकी मिठास ऐसी कि सुधार देगा आपका मूड। स्वाद का जायका ऐड करने डाली हमने लौंग। आचार्य 90 FM पर आप जरूर सुनिए सॉन्ग। मीठा नारियल चावल मींस स्वाद के संग सेहत, सिर्फ हेल्दी खाना खाने की अब डाल ही लीजिए आदत। सावन का महीना लेकर आया खुशियों की आहट, स्वाद का जायका शो मतलब लजीज खाने की चाहत। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाई एक खास रेसिपी, शीर खुरमा नाम की। इस रेसिपी में बारीक सेवई, दूध, खजूर और मिठास भरी शक्कर को देसी घी के साथ मिलाकर हमने ईद को सेलिब्रेट किया। किया के नहीं ऑडियंस जी? जी बिल्कुल किया। इस प्यारी सी रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स मिलाकर हमने थोड़ी सी सजावट भी की। उसके बाद हमने नारियल पूर्णिमा का पावन पर्व भी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। ताजा नारियल, बासमती चावल, गुड़ और लौंग को घी का तड़का लगाकर हमने एक खास महाराष्ट्रीयन रेसिपी बनाई। नारळी भात नाम से फेमस रेसिपी को रक्षाबंधन स्पेशल सेलिब्रेशन के तौर पर हमने आचार्य 90 FM के हमारे खास ऑडियंस के लिए बनाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपीज जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा। सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्द स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मोटिवेशन से भरपूर है, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संघर्ष और संघर्ष के बाद मिली हुई जीत की कहानी। एक ऐसी जीत की कहानी जो आपके दिल में एक ऐसा सवाल छोड़ देगी, क्या हमें सच में कोशिश कितनी करनी चाहिए, ये वाला। क्योंकि हम अक्सर कोशिश नहीं करते और हमेशा ये कहते हैं यार कर लेता तो हो जाता, लेकिन काश हम चीजें करते तो रिजल्ट कुछ और होता। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है गोल्ड मेडल। सुबह के 4 बजे थे, पूरा शहर अब भी गहरी नींद में था। गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन एक पतली सी गली के छोटे से घर का दरवाजा धीरे से खुला। 17 साल का अर्जुन अपने पुराने घिसे हुए रनिंग शूज पहनकर बाहर निकला। उसके शूज के सोल 2 जगह से फट चुके थे, लेस भी अलग अलग रंग की थी। उसकी माँ पीछे से बोली, बेटा रुक। अर्जुन मुड़कर देखता है, माँ एक स्टील के ग्लास में गरम गरम दूध लेकर खड़ी थी। बस इतना ही है, गर्म पी ले। अर्जुन मुस्कुरा दिया, माँ एक दिन ऐसा आएगा ना जब मैं तुझे दुनिया का सबसे महंगा दूध पिलाऊंगा। माँ हंस पड़ी, मुझे महंगा दूध नहीं चाहिए, बस तेरा नाम टीवी पर देख लूं इतना ही काफी है। ये लाइन अर्जुन के दिल में बस गई और वो दौड़ने लगा। हर सुबह 10 किलोमीटर, ना जिम, ना कोच, ना प्रोटीन, सिर्फ एक सपना, और उस सपने का नाम था गोल्ड मेडल। अर्जुन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। पापा एक ऑटो ड्राइवर थे, दिन भर मेहनत करते थे, कभी 500 रुपए तो कभी 300 रुपए कमाते थे, और कभी कभी पूरे दिन में 150 रुपए भी मिलते थे। घर में 3 लोग थे, पापा, माँ और अर्जुन। टीवी पुराना था, फ्रिज नहीं था और कूलर भी नहीं था, लेकिन घर की दीवारों पर एक फोटो जरूर लगी थी, मिल्खा सिंह की। हर रोज अर्जुन उस फोटो के सामने खड़ा होकर कहता, एक दिन मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। पापा हमेशा हंसते, बेटा सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन पेट भी भरना पड़ता है। अर्जुन सिर्फ इतना कहता अपने पापा से, पापा एक मौका दे दीजिए और फिर देखिए। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, 100 मीटर रेस का कंपटीशन भी था। सब स्टूडेंट्स नए नए शूज में आए थे, किसी ने नाइकी, किसी ने एडिडास, और अर्जुन अपने फटे पुराने हुए शूज में आया। सबने शूज को देखा और अर्जुन का मजाक बनाने लगे, सब उस पर हंस पड़े। अरे देख, गोल्ड मेडल विनर आ गया, कहीं रास्ते में शूज टूट गए तो ये तो फिनिश लाइन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन चुप था, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। रेस शुरू हुई, ऑन योर मार्क सेट, और विसल बजी, सब की तीर की तरह भागने लगे। शुरू हुई 40 मीटर तक, सब तीर की तरह भागे। शुरू के 40 मीटर तक अर्जुन पीछे था, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन आखिरी 50 मीटर में जैसे उसके पैरों में बिजली आ गई, एक एक करके सब पीछे छूट गए। और क्या, फर्स्ट पोजीशन अर्जुन, पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स टीचर भी हैरान रह गए, ये लड़का कौन है। प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया, लेकिन मेडल से ज्यादा अर्जुन को एक बात याद आ रही थी। स्पोर्ट्स टीचर ने उसे साइड में बुलाकर कहा, बेटा तेरे अंदर ना टैलेंट है, टैलेंट। पहली बार किसी को देख रहा हूं जो बिना ट्रेनिंग के इतना फास्ट भाग रहा है, कल से मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, सर फीस कितनी देनी होगी। टीचर मुस्कुरा दिए, टैलेंट की कोई फीस नहीं होती बेटा, बस तू आ जाना।

नहीं जीतते, रेस हौसला जीतता है। और क्या, जैसे ही विसल बजी रेस शुरू हुई, पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। अर्जुन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, सबसे आगे। लेकिन अचानक उसका पुराना शू फट गया, बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया, बाकी रनर्स उसके आगे निकल गए। स्पोर्ट्स सर चीखे, अर्जुन उठ! उसके घुटने से खून निकल रहा था, दर्द बहुत था, लेकिन उसने माँ की बात याद रखी थी, मुझे बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ और दोबारा भागना शुरू किया। अब रेस जितना मुश्किल था, लेकिन उसने गिवअप नहीं किया। फिनिश लाइन क्रॉस करते ही वो जमीन पर गिर गया। इस बार वो फर्स्ट नहीं आया, फोर्थ आया, मेडल भी नहीं मिला। रात को घर आकर वो पहली बार रोया, माँ शायद पापा सही कहते थे, ये सपना मेरे लिए नहीं है। माँ ने उसकी बात बड़ी शांति से सुनी और बाद में उसके पास बैठकर कहा, बेटा जो लोग पहली हार के बाद सपना छोड़ देते हैं उनके नाम को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो गिर कर खड़े हो जाए, भागे और अपने सपने को जीत ले, उनका नाम सारे लोग याद रखते हैं। उस रात अर्जुन ने आंसू पोंछे और एक कसम खाई, अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही हफ्ते उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे ट्रैक से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो दोस्तों, ये जो तूफान आने वाला है अर्जुन की जिंदगी में, ये कौन सा तूफान है? क्या ये अर्जुन को चैंपियन बनने से रोक देगा, या अर्जुन के पैर ही अर्जुन से छीन लेगा, जिससे उसकी भागने की क्षमता ही खत्म हो जाए, भागने की शक्ति खत्म हो जाए, या फिर घर की कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी, या फिर घर पे कोई ऐसी मुसीबत आएगी जो अर्जुन के सपने को तार तार कर देगी। ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा उस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM, कहानियों की वाला।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर सुना रहा था आपको गोल्ड मेडल की कहानी। अब गोल्ड मेडल में अर्जुन जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन में हिस्सा लेता है और उसमें फोर्थ आता है और वो मन ही मन सोचता है क्या उसके पिताजी सही कहते थे कि सपने देखना सही है लेकिन पेट भरना भी जरूरी है। लेकिन अर्जुन की माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिद को पूरा करोगे और जीतोगे एक दिन। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट रेस में हारने के बाद अर्जुन ने एक बात समझ ली थी, टैलेंट जरूरी है लेकिन टैलेंट से ज्यादा जरूरी है हिम्मत। अगले ही दिन वो सुबह 4 बजे फिर से ग्राउंड पहुंच गया। स्पोर्ट्स सर उसे देखकर मुस्कुरा दिए। मैं जानता था तू जरूर आएगा अर्जुन। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, सर इस बार सिर्फ रेस नहीं जीतनी, जिंदगी जीतनी है। सर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो फिर आज से ही असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब रूटीन और भी मुश्किल हो गया। सुबह 4 से 7 प्रैक्टिस होती, फिर स्कूल होता, शाम को पापा के साथ ऑटो चलाने में मदद होती और रात को पढ़ाई और फिर स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। स्पोर्ट्स सर उसे हर दिन एक ही बात बोलते, बॉडी थकने से पहले दिमाग हार मानता है अर्जुन। और अर्जुन धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे तेज रनर बनने लगा। उसने अपने सर की कही हुई सारी बातों को तवज्जो दी, उनको मानना शुरू किया और सर की बताई हुई ट्रेनिंग से ही वो सारी चीजें करने लगा। एक दिन स्पोर्ट फेडरेशन के सेलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट में आए थे, स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स होने वाले थे। ग्राउंड में 200 से ज्यादा एथलीट्स थे, सबके पास ब्रांडेड किट्स थी, न्यूट्रिशंस थे, प्रोफेशनल कोचेस थे। अर्जुन के पास सिर्फ एक पानी और माँ के हाथ के बने 2 पराठे। एक लड़के ने हंसकर कहा, भाई पिकनिक पे आया है क्या? दूसरा बोला, गोल्ड मेडल व्हाट्सएप पे मिलता है क्या? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हेडफोन लगाए, आंखें बंद की और माँ की आवाज याद की। बस तेरा नाम टीवी पे देखना है, बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। ट्रायल रेस शुरू हुई, विसल बजी, सब रॉकेट की तरह निकले। शुरू के 100 मीटर में अर्जुन तीसरे नंबर पे था, 150 मीटर 200 मीटर उसने स्पीड बढ़ाई, 250 मीटर अब वो दूसरे नंबर पर जा गया और आखिर के 100 मीटर में पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर जोर से चिल्लाए, लेन नंबर 4 अर्जुन अनबिलीवेबल कमबैक और फर्स्ट पोजीशन। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा, स्पोर्ट्स सर की आंखों में आंसू आ गए, कांग्रेचुलेशंस, तुम स्टेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गए। अर्जुन ने सबसे पहले माँ को फोन किया, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर माँ रो पड़ी, बेटा आज लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। स्टेट चैंपियनशिप से सिर्फ 10 दिन पहले पापा का ऑटो एक ट्रक से टकरा गया, एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट। पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, घर में एक भी रुपया नहीं था। माँ अपनी शादी के कंगन लेकर ज्वेलर के पास गई। ज्वेलर बोला, बस इतने ही मिलेंगे। माँ चुपचाप मान गई। अर्जुन दूर से सब देखता रहा। एक दिल में तूफान चल रहा था, उसने सोचा मैं रेस छोड़ देता हूँ। स्पोर्ट्स सर को पता चला, वो सीधा हॉस्पिटल आए, पागल हो गया है क्या तू, रेस छोड़ेगा? अर्जुन बोला, सर घर ज्यादा जरूरी है। सर ने गुस्से में कहा, घर के लिए ही तो भागना है, तू रेस नहीं भागेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। पापा ने भी ऑक्सीजन मास्क के साथ धीरे से कहा, बेटा मेरे लिए मत रुक, एक दिन जब लोग मुझे गोल्ड मेडल विनर का बाप बोलेंगे ना तो मुझे और प्राउड फील होगा, तब मेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, तब मेरी सारी खुशी बस तुझ में नजर आएगी। अर्जुन टूट गया, उसने पापा का हाथ पकड़कर बोला, आप देखना पापा मैं जीत कर ही आऊंगा। स्टेट चैंपियनशिप का दिन आ गया, हजारों लोग स्टेडियम में बैठे थे, टीवी कैमरास, मीडिया, नेशनल सेलेक्टर्स। अर्जुन पहली बार इतनी बड़ी रेस में हिस्सा ले रहा था, उसके पैर कांप रहे थे,
सर ने उसे एक छोटा सा तिरंगा दिया और कहा, इसे पॉकेट में रख, जब डर लगे याद रख तू अकेला नहीं भाग रहा, पूरा भारत देश तेरे साथ भाग रहा है। रेस शुरू हुई, सब एथलीट्स बहुत स्ट्रांग थे। 200 मीटर तक अर्जुन पीछे था। कमेंटेटर बोला, लगता है प्रेशर में आ गया, लेकिन आखिरी बेंड पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 1, 2, 3 रनर्स को पीछे छोड़ दिए। फर्स्ट लाइन में और फोटो फिनिश में पूरे स्टेडियम की नजर थी, सांसें रुक गई। रिजल्ट आया, विनर अर्जुन, स्टेट चैंपियन, नेशनल्स गेम के लिए सिलेक्ट। मीडिया उसके पास दौड़ पड़ी, अर्जुन आप अपनी जीत किसे डेडिकेट करना चाहोगे? अर्जुन ने कैमरा की तरफ देखा और कहा, ये मेडल मेरी माँ के बचे हुए कंगन का नतीजा है। मेरे पापा का खून पसीने की कमाई है और मेरे स्पोर्ट्स सर के भरोसे का मेडल है। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन नेशनल गेम से सिर्फ 1 महीने पहले प्रैक्टिस के दौरान अर्जुन के पैर में चोट बुरी तरह लग गई। एक डॉक्टर ने सीधा कह दिया, हो सकता है तुम दोबारा कभी रेस नहीं भाग पाओगे। और ये सुनते ही अर्जुन के पैर की जमीन खिसक गई। अब आगे क्या होगा? क्या अर्जुन दोबारा रेस भाग पाएगा या फिर अर्जुन को रेस छोड़नी पड़ेगी या फिर कोई और नया मोड़ आएगा कहानी में? मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम दोनों नहीं जानते कि आगे कहानी में क्या होगा। पर इतना जरूर जानता हूं कि जो हौसला रखते हैं, जिनके अंदर जिद होती है और जो हर एक चीज को पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं, उनका सपना कभी खाली नहीं जाता, उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो देखेंगे अर्जुन का परिश्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: आदरी ने मैं मेरा साथ दी। अंतरों से घूम के जब मैं मुखरे पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: ठहरिए देव साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक गम हो जाए।
3: हाँ, हो जाए, हो जाए, हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
4: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
2: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगा देते हैं।
5: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है वरना दुख होगा इसे।
3: Yeah!

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीस स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि हम जान रहे हैं, अर्जुन एक रेस हारा, फिर उसने अपनी कोशिश जारी रखी, उसे सर मिले, सर के साथ उसने प्रैक्टिस की, फिर एक कंपटीशन गया, उस कंपटीशन को उसने जीता, लेकिन वो वहीं तक नहीं रुका, उसकी जिद काफी बड़ी थी। उसके माँ का जो सपना था उसे वो पूरा करना था, और अर्जुन उस सपने को पूरा करने के लिए हर एक वो काम कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। अर्जुन कभी पीछे नहीं हटा, अर्जुन ने बस यही कोशिश की कि वो किस तरीके से अपने माँ के सपने को जिंदा रखे और अपने माँ के सपने को पूरा करे। तो चलिए देखते हैं अब कहानी का आखिरी हिस्सा। डॉक्टर्स की बात अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। लिगामेंट टियर हो चुका था, अगर जल्दी रेस भागे तो करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। एक पल के लिए सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। नेशनल गेम्स सिर्फ 1 महीने दूर थे। जिस सपने के लिए उसने सालों तक पसीना बहाया, वही सपना उसके हाथों से अब दूर जा रहा था, फिसल रहा था। उस रात अर्जुन ने पहली बार भगवान से शिकायत की, मैं ही क्यों, आखिर मेरी क्या ही गलती है, मैं तो सिर्फ अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, तो मेरे साथ ही ये क्यों। उसकी माँ चुपचाप उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा भगवान कभी किसी का सपना नहीं तोड़ते, वो सिर्फ देखते हैं सपना देखने वाला कितना मजबूत है, और अगर तुम मजबूत हो तो जरूर तुम ये अपनी परेशानी अपनी कठिनाई को पार कर जाओगे। और उसके बाद अगले 1 महीने रेस से ज्यादा मुश्किल था पेन, फिजियोथेरेपी, आइस पैक्स, एक्सरसाइज, हर दिन दर्द, कभी घुटना जवाब दे देता, कभी कॉन्फिडेंस, और क्या, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन स्पोर्ट्स सर हर रोज बस उसे एक ही बात बोलते, गोल्ड मेडल ट्रैक पर नहीं जीता जाता, गोल्ड मेडल पहले दिमाग में जीता जाता है और उसके बाद गोल्ड मेडल मिल जाता है। अर्जुन मेडिटेशन करता, विजुअलाइजेशन करता, हर रात आंखें बंद करके फिनिश लाइन इमेजिन करता, और हर बार उसके सामने तिरंगा रह रहा था और खुद को देखता। अब धीरे धीरे 1 महीना गुजर चुका था, नेशनल गेम्स अब आने ही वाले थे, और आखिरकार नेशनल गेम्स वाला दिन आ गया। देश के हर स्टेट के चैंपियंस एक ही स्टेडियम में खड़े थे। कमेंटेटर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, आज का 400 मीटर का फाइनल रेस, यहाँ से निकलेगा भारत का अगला चैंपियन। स्टैंड में हजारों लोग, टीवी कैमरास, मीडिया, और वीआईपी गैलरी में अर्जुन के पापा, जो एक्सीडेंट के बाद पहली बार व्हीलचेयर पर स्टेडियम आए थे। उनके पास माँ बैठी थी। माँ ने धीरे से कहा, देखो हमारा बेटा, देखो। पापा की आंखों में आंसू आ गए, और क्या, रेस शुरू हुई। ऑन योर मार्क्स सेट एंड विसल बजी। सब एथलीट्स बिजली की तरह निकल पड़े। 100 मीटर अर्जुन चौथे नंबर पर था। कमेंटेटर्स बोला, अर्जुन स्लो स्टार्ट ले रहा है। 200 मीटर अब तीसरे नंबर पर। स्पोर्ट्स सर चिल्लाए, पेशेंस, 300 मीटर अब तीसरे नंबर पर। लेकिन उसके इंजर्ड पैर में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। एक सेकंड के लिए उसका बैलेंस ही हिल गया। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात गूंज रही थी, करियर

खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी पल उसने वीआईपी गैलरी की तरफ देखी। पापा व्हीलचेयर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। माँ हाथ जोड़कर दुआ कर रही थी। स्पोर्ट्सर दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाए और इतनी जोर से चिल्लाए, अर्जुन तिरंगे के लिए जीतना है। बस ये कुछ शब्द सुनते ही जैसे अर्जुन के अंदर एक रोशनी दौड़ पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एक रनर क्रॉस किया, फिर दूसरा। अब सिर्फ उसके आगे दो एथलीट बचे थे। आखिरी 50 मीटर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर चीख रहे थे, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा फिनिश बहुत कम देखने को मिलता है। और आखिरी के 20 मीटर में तो पूछिए ही मत। दोनों रनर्स खड़े हो गए, कांधे से कांधा मिलाकर भाग रहे थे। 10 मीटर, 5 मीटर और क्या, फिनिश लाइन और फोटो फिनिश, और पूरा स्टेडियम खामोश। सबकी नजरें स्कोर बोर्ड पर थी। कुछ सेकंड जो अर्जुन को घंटों जैसे लग रहे थे, फिर स्क्रीन पर रिजल्ट फ्लैश हुआ। गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ। अर्जुन पोडियम पर खड़ा था, उसके कंधों पर तिरंगा था, गोल्ड मेडल उसके गले में था। जैसे ही तिरंगा सबसे ऊपर गया, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेडल को चूमा और धीरे से कहा, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी माँ का सेक्रीफाइस है, पापा की मेहनत है और स्पोर्ट्स सर के भरोसे का नतीजा है, और हर उस इंसान का है जैसे जिसे कभी लोगों ने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने वो कर दिखाया। अब एक अनोखा फैसला आने ही वाला था कि अर्जुन ने अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया से पूछा अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब आपका अगला सपना क्या है? सबको लगा वो ओलंपिक्स बोलेगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं ओलंपिक जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गांव में एक फ्री स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा, ताकि किसी और बच्चे को फटे हुए शूज की वजह से सपना ना छोड़ना पड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 5 साल बाद जहां कभी अर्जुन अकेला सुबह 4 बजे दौड़ता था, आज वहीं 300 से ज्यादा बच्चे हर सुबह 4:30 बजे दौड़ते हैं। गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था, अर्जुन गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स एकेडमी, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान लेने वालों की कभी जीत नहीं होती। एक छोटा सा लड़का अर्जुन, जिसके पास सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके पास वो मेहनत, वो जिद, वो लगन थी, और उसी जीत के चलते, उसी मेहनत के चलते उसने अपना वो सपना पूरा किया। उसने वो गोल्ड मेडल जीता, उसने अपना हौसला बुलंद किया, और उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस पूरे शहर में, उस पूरे मोहल्ले में इतने स्टूडेंट्स अब रेस में और अलग अलग तरह के खेलों में हिस्सा लेने लगे, जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। मैं आपसे कहता हूँ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।

अजय 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? इस गर्मी वाले सीजन से कुछ राहत मिली आपको? थोड़ी सी तो मिली ही होगी। वैसे आचार्य 90 FM के प्यारे ऑडियंस से मिलकर हमें तो खुशी ही मिलती है, क्योंकि आप हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्त और दोस्तों से मिलकर होने वाली खुशी का इजहार करना हमें बखूबी आता है। अर्ज किया है, अगर चलती रहूं मैं अपनी मंजिल की ओर तो हो सकती है इनमें से एक बात या तो मिल जाएगी मंजिल, मतलब ऑडियंस का साथ, या फिर यूं ही चलता रहेगा सफर और मिलूंगी आपसे शुक्रवार की शाम और सोमवार की दोपहर, जब साथ होंगे यहाँ ऑडियंस जी आप जैसे हम सफर, तब गर्मी की मार होगी धीरे धीरे बेअसर। स्वाद का जायका निभाने का ये वादा, मनोरंजन से भरपूर और गाने भी ज्यादा, खाने के माध्यम से दिल को लुभाना मींस अपनापन जताकर दोस्ती को निभाना। स्वागत है ऑडियंस जी आपका इस शो पर, नई रेसिपीज को लाई हूँ आप ही के लिए ढूंढकर। भारतीय सीमा के रसोई वाले राज, साथ में बजेंगे सुमधुर और सुरीले साज। हमारी आज की पहली रेसिपी है एक स्पेशल टाइप का लड्डू। इस लड्डू में इस्तेमाल होने वाली एक स्पेशल चीज गर्मी को मात देने के साथ हमारे देसी खाने को खूबसूरत भी बनाएगी। ये गर्मियों में शरीर को ठंडा रखती है, दिखने में मोतियों जैसे है और इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसे पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम, फालूदा और शरबत बनाते समय इसे यूज किया जाता है। जनाब सही पहचाना आपने, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सब्जा की। जब सब्जा को पानी में भिगोकर रखते हैं तब ये फूलकर जेली की तरह बनता है। सब्जा की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप सब्जा का सेवन हर रोज कीजिए। इससे एसिडिटी कंट्रोल में रहती है और हमारा वेट भी कंट्रोल में रहता है। अब हम इस सब्जा के लड्डू को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सब्जा के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सब्जा के बीज 100 ग्राम, नारियल का पानी आवश्यकता के अनुसार। नारियल के पानी में हमें सब्जा के बीज को सोक करना है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 कटोरी भर के पानी मैं यहाँ ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए ताजा नारियल 1, हेल्दी वाला ब्राउन गुड 200 ग्राम, देसी घी 4 चम्मच, मिल्क मसाला 4 चम्मच या फिर काजू और बादाम 7-8। उसके साथ हमें जरूरत पड़ेगी काला मुनक्का 15 से 20, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, जायफल पाउडर 1 चुटकी भर। जायफल पाउडर को यूज करना ऑप्शनल है। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इसकी रेसिपी को सुनने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक बड़ी कटोरी लीजिए, फिर उसमें डालिए सब्जा के बीज। हमें सब्जा के बीज को भिगोना है। इसे ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम इन्हें नारियल के पानी में सोक करके कुछ टाइम के लिए साइड में रख देंगे। लगभग 2 घंटे तक सब्जा के बीज को नारियल के पानी में भिगोकर हमने रख दिया है। 2-3 घंटे के बाद वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। एक ट्रांसपेरेंट जेली टाइप टेक्सचर आपको जब दिखे तब समझ लीजिए कि बीज अब यूज करने के लिए सब्जा के बीज अब यूज करने के लिए रेडी हो गए हैं। उसके बाद हमें ताजा नारियल कद्दूकस करके लेना है, कद्दूकस मींस ग्रेटेड। फिर ब्राउन गुड को बारीक टुकड़ों में काटकर रेडी रखना है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो उन्हें पतले टुकड़ों में काटकर तैयार रखिए। हे भगवान, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। अब एक गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। सब्जा के लड्डू बनाने की तैयारी तो हो गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले आप लीजिए एक नॉनस्टिक पैन या बड़ी सी कढ़ाई, फिर इसमें डालिए शुद्ध देसी घी, उसके बाद इसमें ताजा नारियल और गुड़ डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए पकाइए। इसे पकाते समय गैस को लो फ्लेम पर ही रखें, अदरवाइज ये मिश्रण जल सकता है और आपकी मेहनत बेकार ना हो, इसलिए आपको प्रिकॉशन लेनी है। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद इसमें ऐड कीजिए सब्जा के बीज। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट के बाद ये मिश्रण रेडी हो जाएगा और तब तक इसे अच्छे से पकाते हुए आपको चम्मच चलाते रहना है। गुड़ और नारियल का टेक्सचर जब एक साथ मिलेगा तब इसे टेस्ट करने के लिए आपका मन जरूर लग जाएगा। लेकिन लेकिन लेकिन अभी कर लीजिए थोड़ा इंतजार, क्योंकि सब्जा के लड्डू चखने के लिए हम भी बैठे हैं कब से बेकरार। अब आगे क्या करें? तो भाई सुनिए, आगे हमें ये करना है कि इस मिश्रण में ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और जायफल पाउडर को डालना है। इसे भी मिक्स करते हुए धीमी आंच पर पकाना है। ऐसा करते समय आपका किचन मनमोहक खुशबू से भर जाएगा। फिर आप गैस को बंद कर दीजिए, इस मिश्रण को ठंडा होने दीजिए और तब तक हमें वेट करना है। लड्डू बनाने का मिश्रण अब थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। इसके लिए आप एक बड़ी सी प्लेट लीजिए, फिर अपने हाथों पर आप थोड़ा सा घी लगाइए। उसके बाद तैयार मिश्रण से नींबू के साइज के लड्डू को बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर एक एक करके सब्जा के सारे लड्डुओं को आप उस प्लेट में रख दीजिए। जब सारे लड्डू तैयार हो जाए तब लगभग एक घंटे तक उन्हें सूखने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, या तो आप उन्हें फैन के नीचे भी रख सकते हैं। चूंकि ये लड्डू हमने ताजे नारियल को यूज करके बनाए हैं, इसलिए इन्हें फ्रिज में रखना बेहतर होगा। इन लड्डुओं को एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप फ्रिज में ही स्टोर कीजिए। वैसे ये सब्जा लड्डू होते हैं इतने टेस्टी कि झटपट खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन फ्रिज में एटलीस्ट एक हफ्ते तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आपको जब भी इन्हें खाने का मन करे तब आप आधा घंटा पहले इन्हें बाहर निकाल कर रखें। ऐसा करने से इसका ठंडापन कम होकर ये रूम टेम्परेचर वाले हो जाएंगे। इस तरह से हमारे टेस्टी और हेल्दी सब्जा के लड्डू हो गए हैं तैयार। सुबह के नाश्ते में आप इन सब्जा के लड्डुओं को जरूर खाएं। ऐसा करने से आप दिन की शुरुआत एक हेल्दी तरीके से करेंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस सब्जा के लड्डू की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है गोल मटोल लड्डू। गोल मटोल से मीठे लड्डू बनाने डाला सब्जा, इसका टेस्ट है ऐसा अनोखा कि मेरे दिल पर किया कब्जा। जब जब देखूं मैं थाल में भरे ये मीठे मीठे लड्डू, तब सारा डाइटिंग भूलकर इन पर हो जाऊं लट्टू। जब जब हो जाता संगम घी गुड़ और कोकोनट, तब इनका सेवन करके आप जरूर पाएंगे हेल्दी गट। देसी घी और ब्राउन गुड़ देगा इतनी ताकत कि बीमारी रहेगी दूर और ना आएगी कोई आफत। लड्डू में भी छुपे हैं सेहत से जुड़े कुछ राज, हमारे शो में शामिल है रेसिपीज और सुरीले साज। जब होगी ऑडियंस जी किचन में आपकी एंट्री, तब लगाइए आचार्य 90 FM और सुनिए गाने, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री। अब बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। हमारी अगली रेसिपी का नाम है क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। गर्मी के लिए ये बेहद ताजगी भरा और हाइड्रेटिंग ड्रिंक है। इसे घर पर बनाना एकदम आसान है। खीरा, नींबू, पुदीना डालकर बनाया गया ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको चिलचिलाती धूप में तुरंत ठंडक और एनर्जी देगा। यूजुअली मॉकटेल में ताजे फलों का रस,
सिरप, जड़ी बूटियां और सोडा या कार्बोनेटेड पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वर्जिन पिनाकोलाडा, वर्जिन मोहितो, स्ट्रॉबेरी लेमनेड और सिंड्रेला, ऐसे कई सारे मॉकटेल्स फेमस हैं। क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल, ये ड्रिंक लैटिन अमेरिकन अगुआ फ्रेस्का और इंडियन खीरा नींबू शिकंजी का लेटेस्ट वर्जन है। वैसे दुनिया भर के कैफे में ये काफी फेमस है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। क्यूकम्बर मीन्स खीरा, म्हणजे आपली काकड़ी, एक बड़ी सी। नींबू का रस 2 बड़े चम्मच। पुदीने की पत्तियां 10 से 12। चीनी या शहद स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 2 चम्मच चीनी ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए काला नमक 1 चुटकी, स्प्राइट 2 ग्लास, बर्फ के टुकड़े 4 या 5, ये ऑप्शनल है। अब हम क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए। फिर आगे क्या, आगे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हम बना रहे हैं क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। ककड़ी को हमने अच्छे से धो तो लिया है, इसे यूज करने से पहले आप उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे टेस्ट कीजिए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि कड़वी ककड़ी मीन्स खराब ककड़ी। हमें नॉर्मल टेस्ट वाली ककड़ी को यूज करना है। फिर उस ककड़ी को आप बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद हमें लेना है मिक्सर का जार। उस जार में हम डालेंगे खीरा मीन्स ककड़ी के टुकड़े और पुदीना के कुछ पत्ते। इसके साथ आधा कप पानी डालकर हमें इसका पेस्ट बनाना है। जब तक ये मिश्रण एकदम स्मूथ ना हो तब तक हमें इसे मिक्सर में पीसना है। इसका स्मूथ पेस्ट बनने के बाद क्या करें? तो भाई अब हमें इसे छानना है। इसके लिए हमें चाहिए एक छलनी। उस छलनी की मदद से इस पेस्ट को हम छान लेते हैं। ऐसा करने से खीरा मीन्स क्यूकम्बर के रेशे अलग हो जाएंगे। फिर उस छाने हुए स्मूथ जूस को हम एक बर्तन में निकालेंगे। अब उसमें मिलाना है नींबू का रस, शक्कर और थोड़ा सा नमक। फिर एक चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लीजिए 2 सर्विंग ग्लास। फिर हमेशा वाला क्रिस्टल डेकोरेशन मीन्स नमक और शक्कर वाला डेकोरेशन करना है। उन ग्लास के किनारों को आप थोड़ा पानी लगाइए। उसके बाद एक छोटी प्लेट में हम लेंगे 1 चम्मच शुगर पाउडर और 1 चम्मच नमक। इस प्लेट में नमक और शक्कर को मिक्स करना है। अब उन गीले किनारों वाले ग्लास को उस प्लेट में पलट दीजिए। I mean to say, उन्हें अपसाइड डाउन करके उस प्लेट में रखिए। फिर एकदम आराम से उन्हें सीधे रखिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल डेकोरेशन वाला प्रोफेशनल लुक आएगा। उसके बाद क्या करना है तो जनाब अब सुनिए आगे। अब बड़ी नजाकत से उन ग्लास में हम डालेंगे क्यूकम्बर लाइम का जूस। आप चाहे तो सबसे पहले बर्फ के कुछ टुकड़े डालिए और फिर क्यूकम्बर लाइम का जूस डालिए। वैसे मुझे पर्सनली विदाउट आइस वाले मॉकटेल्स ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब उस क्यूकम्बर लाइम जूस के ऊपर हमें डालना है स्प्राइट। फिर इस मिश्रण को एक चम्मच की मदद से आप मिक्स कीजिए। अब बारी आती है फाइनल टच की। उस ग्लास के किनारों पर हम लगाएंगे नींबू की पतली स्लाइस और उसके साथ रिफ्रेशिंग पुदीना की एक सुंदर सी पत्ती। अब इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल की सुंदर छवि को आप कीजिए अपने मोबाइल कैमरा में बंद, क्योंकि इसे टेस्ट करने लम्हे बचे हैं चंद। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए आप इसमें चुटकी भर ग्रेटेड अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज विदाउट जिंजर भी इसका टेस्ट एकदम कमाल का ही होगा। इस तरह हमारा क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल हो गया है एकदम तैयार। और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हैं एकदम बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट अपने किचन में जाइए और फटाफट से क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल को बनाइए। इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है राहत वाला मॉकटेल। झुलसती सी गर्मी से जब पानी हो राहत और ककड़ी को खाने की मुझे हो चाहत, तब क्यों जाए हम कोई रेस्टोरेंट या होटल, घर में ही बनाएंगे टेस्टी और रिफ्रेशिंग मॉकटेल। गर्मी से बेहाल होकर आए जब पसीना, तब ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक मांगे कोई हसीना, उस वक्त जरूर पेश कीजिए अनोखा सा नगीना, जिसमें है खीरा और रिफ्रेशिंग पुदीना। खीरा और पुदीना संग डालो थोड़ा स्प्राइट, इसको सिप करके एक्सप्रेशन दो ब्राइट। इसका टेस्ट निखारने डालो थोड़ी सी शक्कर,
क्यूकम्बर पुदीना मॉकटेल गर्मी को देगा टक्कर। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न वाले कल्चर का ये मेल मींस किचन में कलाकारी दिखाने वाला खेल। आपकी उपस्थिति से स्वाद का जायका में आई है बहार। सोमवार और शुक्रवार के इंतजार में भारतीय सीमा हुई बेकरार। इस शो पर बनाएंगे हम टेस्टी टेस्टी खाना। आगे बात होगी और पहले सुनिए अगला गाना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के इस शो पर सबसे पहले हमने बनाए हेल्दी वाले सब्जा के लड्डू। आलू मींस हलीम के लड्डू की रेसिपी से मेल खाने वाले इन लड्डुओं को बनाकर हमने हमारी और हमारे प्यारे ऑडियंस की दोस्ती की मिठास बढ़ाने की एक कामयाब कोशिश की है कि नहीं। जी बिल्कुल की। ताजा नारियल, गुड़, सब्जा के बीज को घी और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर बड़े प्यार से हमने हेल्दी लड्डू बनाए। उसके बाद हमने बनाया वेस्टर्न स्टाइल वाला एक मॉकटेल जिसका नाम था क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। इसे बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया खीरा मींस ककड़ी, उसके साथ पुदीना और स्प्राइट, जिसने टेम्परेचर को कम करने की दी हाइट। इसे खूबसूरत बनाने के लिए प्रोफेशनल टच देने के लिए हमने नमक और शक्कर को मिक्स करके क्रिस्टल डेकोरेशन भी किया। इस प्रकार से हमने हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए गर्मी सीजन स्पेशल सुपर कूल रेसिपीज को पेश किया। आई होप दैट आपको हमारी आज की रेसिपीज अच्छी ही लगी होगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपसे मिलती रहूंगी हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे। अर्ज किया है, जिक्र करते हैं ऑडियंस जी, हवा से अब सोमवार और शुक्रवार आएगा कब? जब भी होती है आपसे मुलाकात तब लगता है ऐसे जैसे धूप में हो बरसात। हमारे इस स्टूडियो में होता है ऐसा दृश्य जैसे आसमान में बिखरा सतरंगी इंद्रधनुष। स्वाद के जायके का म्यूजिकल मेल मींस हेक्टिक स्केड्यूल में मनोरंजन का खेल। सोमवार और शुक्रवार की मुलाकात का ये वादा आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी हमारी ट्रेकिंग वाली। हम में से कई सारे लोग ट्रेक पर जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ। तो यही कहानी है एक नए एडवेंचर की, एक नए एक्सपीरियंस की। तो चलिए सुनते हैं सात अनजान मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसे नहीं होते, और कुछ सफर बिल्कुल प्लान की तरह होता है। सितंबर का महीना था, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स पैक्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डेडलाइंस, रोड्स पर ट्रैफिक, और इन सब के बीच सात लोग थे जो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ वक्त के लिए भागना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रेक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया था। ट्रेक का नाम था सीक्रेट वैली, लोकेशन सीक्रेट, रूट सीक्रेट, और ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एडवेंचर गारंटीड। सैटरडे सुबह 5 बजे मुंबई सेंट्रल के बाहर सब पहली बार मिले। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। पहले पहुंचा 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस लैपटॉप और कोडिंग से भरी जिंदगी। उसके बाद रिया आई, शोल्डर पर कैमरा, फेस पर कॉन्फिडेंस, फोटोग्राफी उसका पैशन था। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आ गए, आरुष, मीरा, देव, सना और हाँ यशवी। सब ने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी। तो हम ही हैं सीक्रेट वैली वाले, देव ने पूछा। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हो गई। और कुछ ही देर में ट्रैवलर वैन उन्हें लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी। 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों से बीच गुजरती रही। गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, और स्ट्रेंजर्स धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। कबीर और रिया की बातें सबसे ज्यादा हो रही थी, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, लाइफ, ड्रीम्स। पता नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए। गाड़ी फाइनली एक छोटे से गांव में रुक गई। विलेज इतना रिमोट था कि मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था, सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और अजीब सी सीरियस आंखें। मैं बाप उरांव, गाइड, उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोला, जो बोलू वही करना। देव हंस दिया, लगता है डेंजरस ट्रैक है। बापूराव ने जवाब दिया, जंगल में शॉर्टकट मत लेना, समझे। उस वक्त किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन शाम तक सबको समझ आने वाला था कि वो बार बार शॉर्टकट का नाम क्यों ले रहा था। ट्रेक शुरू हुई। नेचर ब्रेथ टेकिंग थी। हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, बर्ड साउंड्स, सब एंजॉय कर रहे थे। रिया हर 10 मिनट में फोटो क्लिक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। गाइस गाइस गाइस गाइस गाइस, सब रुक गए। जमीन पर एक पुराना DSLR कैमरा पड़ा था, पूरा डस्टी, जैसे सालों से यहां हो। कबीर ने उठाया, ये यहां क्या कर रहा है। देव क्यूरियोसिटी में था, मेमोरी कार्ड चेक करने लगा। कैमरा डेड था, लेकिन कार्ड बच गया था। देव ने पूछा, इसे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर उस कार्ड को कनेक्ट किया, फोटोज ओपन हुई और सब चुप हो गए। फोटोज में एक ट्रेकिंग ग्रुप था, 7 लोग, एग्जैक्टली इसी जंगल में, इसी रूट पर, इसी वैली में। सब स्माइल कर रहे थे, एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लास्ट फोटो में सबके रोंगटे खड़े हो गए। लास्ट फोटो में सिर्फ एक आदमी था, बाकी 6 लोग गायब थे। डेट लिखी थी सितंबर 2019। मीरा ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन है। किसी के पास जवाब नहीं था। लंच के दौरान वीक नेटवर्क मिल गया। सना ने गूगल सर्च की,
और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। 2019 में इसी एरिया में एक ट्रेकिंग ग्रुप मिसिंग हुआ था। 7 लोग गए थे इस ट्रैक पर, सिर्फ एक वापस आया, बाकी कभी नहीं मिले। न्यूज आर्टिकल में लोकेशन भी सेम थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। देव बोला, कोइंसिडेंस है। लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। बापूराव दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। कबीर उसके पास गया, अंकल आपको कुछ पता है क्या वो ग्रुप के बारे में? बापूराव कुछ सेकेंड तक चुप रहा, फिर बोला, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और आगे चलो। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी से छुपा नहीं। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे रास्ते दो हिस्सों में बंटने वाले थे, एक सेफ ट्रायल और एक शॉर्टकट। वही शॉर्टकट जिसने सालों पहले 6 लोगों को अपने अंदर समा लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे थे एक ट्रेकिंग की कहानी, इस ट्रेकिंग की कहानी में कैसे 7 अनजान लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान बस इसी एक चीज के लिए आए थे कि वो एक नया एक्सपीरियंस देख पाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस महसूस कर पाएंगे, एक नई ट्रेकिंग पे जाएंगे, एक नई एनर्जी लाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको तो ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि उन्हें लगने लगा कि कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया अब। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM और अपने मनपसंद गानों को।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक आचार्य 90 FM पर। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेक अभी आगे जाके और मुश्किल होने वाली थी, तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। हवा में ठंडी नमी थी। जंगल और गहना होता जा रहा था। रास्ते धीरे धीरे मुश्किल होने लगे थे। कुछ देर बाद सब एक जंक्शन पर पहुंचे। रास्ते 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक वाइट ट्रायल और एक बहुत ही नैरो जंगल पाथ। बापूराव तुरंत बोला, सब लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन आरुष ने राइट साइड वाले पाथ को देखा। ये शॉर्टकट लग रहा है। बापूराव ने तुरंत मना किया, नहीं। यश हंस पड़ा, गाइड अंकल फिर से शॉर्टकट से डरा रहे हैं क्या? देव भी बोल पड़ा, मैप के हिसाब से तो ये रास्ता भी वैली में ही जा रहा है। बापूराव के चेहरा सीरियस हो गया। मैं 30 साल से यहाँ का गाइड हूँ, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन आरुष को यकीन था कि वो सही है। अंकल, अननेसेसरी लॉन्ग रूट क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। कबीर और सना गाइड की साइड थे, लेकिन आरुष, देव और यश शॉर्टकट के फेवर में। रिया न्यूट्रल थी और मीरा कंफ्यूज्ड। आखिर प्रेशर में आकर बापूराव मान गया, लेकिन उसने एक बात कही, एक ऐसी बात जो बाद में सबको याद आने वाली थी। उसने धीरे से कहा, जंगल हर बार माफ नहीं करता। शॉर्टकट ऑफिशियली सिर्फ 40 मिनट का था, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको अजीब लगने लगा। कबीर ने GPS चेक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई। कंपास ऐप भी वियर्ड डायरेक्शन दिखा रहा था। सना ने अपना फोन निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम। देव ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है जंगल एवेंजर्स लेवल का मैग्नेटिक फील्ड रखता है। किसी ने कहा, नहीं हंसना, बस हो गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। बापूराव बार बार आसपास देख रहा था, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। बापूराव ने धीरे से कहा, हम गलत जगह पे आ गए हैं। सब चुप। मतलब मैं भी नहीं जानता हम कहाँ हैं। एक सेकंड के लिए पूरे जंगल में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। गाइड जो 30 साल से यहां ट्रेक करा रहा था, वो खुद खो गया था। शाम होने लगी थी। क्लाउड्स नीचे उतरने लगे थे। विजिबिलिटी कम होने लगी थी। अब वापस जाना इम्पॉसिबल था। ग्रुप ने एक छोटी सी फ्लैट जगह देखकर कैंप लगाया। टेंट सेट्स हुए, स्मॉल बॉनफायर जलाया। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके अंदर फियर था, एक डर था। डिनर के वक्त भी यूजुअल जोक्स गायब थे। रिया ने धीरे से पूछा, बापूराव सच सच बताओ, 2019 में क्या हुआ था? बापूराव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ। बॉनफायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ग्रुप का गाइड नहीं था। सब फ्रीज हो गए। मतलब मैं उसी ग्रुप का गाइड था। उन्होंने भी शॉर्टकट ही लिया था। देव की आवाज निकल गई, फिर? बापूराव ने नीचे देखा, 6 लोग कभी नहीं मिले। बॉनफायर के पास साइलेंस छा गया। उस रात लगभग 1 बजे सब अपने टेंट्स में सो रहे थे, तभी क्रंच क्रंच क्रंच किसी के छलने की आवाज आई। कबीर की आंख खुल गई। उसने टेंट से बाहर झांका, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दूसरी साइड से, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई कैंप के पास घूम रहा हो। कबीर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। उसके पीछे देव भी आ गया। देखा तूने? कबीर ने सिर हिलाया। दोनों ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और डार्कनेस। तभी देव का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर, क्या हुआ? उधर देख, लगभग 50 मीटर दूर
पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी। बस उसकी परछाई दिख रही थी, मोशनलेस, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च पर फोकस की और उसी सेकंड वो आदमी गायब हो गया, बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। फिर सुबह हुई। सुबह सबने डिसाइड किया कि बिना रुके जंगल से बाहर निकलना है। टेंशन अपने पीक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक क्लिफ मिला, डेंजरस, बहुत डेंजरस। नीचे हजारों की फिटकी खाई। रास्ता उस क्लिफ के एज से जा रहा था। सब बहुत केयरफुली चल रहे थे। सबसे आगे यश था। उसका कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ था। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके पैर के नीचे पत्थर टूट गया, क्रैक। सब कुछ एक सेकंड में हुआ। यश सीधा नीचे चला गया। उसका शरीर हवा में लटक गया। नीचे सिर्फ मौत थी। हजारों फीट की खाई। उसका हाथ एक ट्री रूट में अटक गया। बस वही उसे जिंदा रखे हुए था। यश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर ग्रिप छूट जाती तो बॉडी भी नहीं मिलती। रिया रो पड़ी। मीरा पैनिक में आ गई। सना चिल्लाई, कोई रोप निकालो। कबीर और आरुष तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इमरजेंसी रोप निकाली, लेकिन प्रॉब्लम थी, रूट कभी भी टूट सकती थी। यश की ग्रिप स्लिप हो रही थी। उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ मौत को सामने देख रहा था। कबीर क्लिफ की एज तक गया। सबने उसे पकड़ा। उसने रोप यश की तरफ फेंकी। पहली बार मिस, दूसरी बार मिस, तीसरी बार वो रोप यश ने पकड़ ली। लेकिन तभी जिस रूट को पकड़कर वो लटका था, वो क्रैक करने लगी। कबीर, रूट टूट गई और यश नीचे गिरने लगा। लेकिन उसी सेकंड रोप टाइट हुई। कबीर और आरुष पूरी ताकत लगाकर रोप खींच रहे थे। उनके हाथ जल रहे थे, मसल शेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली यश को ऊपर खींच लिया गया। जैसे वो सेफ ग्राउंड पर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। आज उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सना को कुछ और नजर आया था, कुछ ऐसा जिसने 2019 वाली मिस्ट्री को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। और उस डिस्कवरी के बाद जंगल के हर राज खुलना शुरू हो गए थे। यश अभी भी शॉक में था। उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसे पानी दिया। तू ठीक है ना? यश ने सिर्फ हां में सिर हिलाया, लेकिन सना की नजर अभी भी क्लिफ के नीचे थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। कबीर, एक मिनट इधर आओ। कबीर एज पर आया, नीचे देखा और उसका गला सूख गया। लगभग 200 फीट नीचे पेड़ों और पत्थरों के बीच कुछ सफेद सा पड़ा था। पहले तो लगा पत्थर होगा, लेकिन जब रिया ने कैमरे का जूम यूज किया, सबकी सांसें रुक गई। वो एक स्केलेटन था, इंसानी हड्डियों का ढांचा, और उसके पास एक फैडेड ट्रेकिंग बैकपैक। बैग पर पूरी धूल जमे हुई थी, लेकिन एक नाम अब भी पढ़ने लायक था। वीकेंड वंडरर्स, वही नाम जो 2019 वाले मिसिंग ट्रैक के ग्रुप का था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। देव ने धीरे से कहा, मतलब उनमें से कोई यहां गिरा था? बाकुराव ने आंखें बंद कर दी, जिससे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक वीकेंड वंडरर्स करके ग्रुप था जो इनके पहले उसी ट्रैकिंग पर आया था, और उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन मिला था। 6 लोग गायब थे, लेकिन उसमें से दूसरे पर्सन का अब
मानवीय शरीर ढांचा मिला है। ये देखकर इन सात लोगों का बहुत डर आया है। कहानी का अगला हिस्सा हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के गुल्लक।

स्वागत है आपका आचार्य 90 FM में। ब्रेक के बाद शाम होने से पहले ग्रुप एक छोटी सी जगह पर रुक गया। सब आंसर्स चाहते थे। कबीर ने सीधे पूछा, बापूराव आप सच बताओ। बापूराव ने कुछ देर तक बोनफायर की आग को देखा और फिर बोला, 2019 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। सात लोग थे, यंग थे, एक्साइटेड थे, एडवेंचर के लिए पागल थे, बिल्कुल तुम लोगों के जैसे। उसकी आवाज भर गई। मैं गाइड था। मैं उन्हें शॉर्टकट लेने से रोकता रहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में हवा चल रही थी और बापूराव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रहा था। हम रास्ता भटक गए थे। दो दिन जंगल में घूमते रहे। एक एक करके लोग गायब होने लगे। मीरा ने पूछा, मतलब? बापूराव ने धीरे से कहा, पता नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे, जैसे जंगल उन्हें निगल लिया हो। सबके शरीर ठंड पड़ गए थे। उस रात मौसम अचानक से खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। बापूराव चिल्लाया, हमें शेल्टर ढूंढना होगा। ग्रुप ने टॉर्च निकाली। लगभग आधे घंटे बाद उनको एक केव मिली। बहुत पुरानी केव, अंधेरी और अजीब सी ठंडी। सब अंदर चले गए। बारिश बाहर टूट कर गिर रही थी। देव ने फ्लैश लाइट घुमाई और फिर वो फ्रीज हो गया। गाइज, सब उसकी तरफ देखा। केव के कोने में तीन पुराने बैकपैक्स पड़े थे, धूल से भरे हुए, और उसके पास एक रस्टेड टॉर्च और एक डायरी। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। रिया ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था अमन वर्मा, वही मिसिंग ग्रुप का मेंबर। रिया ने डायरी खोली। पेज गीले और पुराने थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ भी था जिसे पढ़ा जा सकता था। उसने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डे वन, हम शॉर्टकट में आ गए हैं। गाइड टेंशन में है, पर सब ठीक लग रहा है। डे टू, GPS काम नहीं कर रहा, हम लॉस्ट हो गए, सब नर्वस है। डे थ्री, कल रात किसी ने फुटस्टेप सुनी। हमने सोचा जानवर होगा, लेकिन फुटप्रिंट्स इंसान के थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। रिया ने अगला पेज खोला। आज रोहित गायब हो गया है। सुबह उसका टेंट खाली मिला। हमने हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सना का गला सूख गया। मेरा डायरी पकड़ने वाले हाथ को देख रही थी। उसमें हल्का सा कांप था। रिया ने अगला पेज खोला। हम सबको लगता है कि कोई हमें देख रहा है। रात को पेड़ों के बीच एक आदमी दिखता है। जब पास जाते हैं तो गायब हो जाता है। देव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। पेड़ के पीछे वाला आदमी? कबीर ने धीरे से हमें सर हिलाया। डायरी के लास्ट पेज सबसे अजीब था। उस पर लिखा था, अगर किसी को ये डायरी मिले, शॉर्टकट मत लेना, और अगर पेड़ों के बीच वो आदमी दिखे तो उसके पीछे मत जाना, वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा और अंदर ले जाएगा। उसके बाद सेंटेंस अधूरा था। पेज पर खून जैसा लगा था और वो डायरी वहीं खत्म हो गई। उसी वक्त केव के बाहर से आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सब फ्रीज हो गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी। बहुत पास, बहुत ही पास। क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो और उनका इंतजार कर रहा हो। रिया ने फ्लैशलाइट एंट्रेंस की तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। एंट्रेंस के बाहर बारिश में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा डार्कनेस में छुपा हुआ था और वो सीधा केव के अंदर देख रहा था उसकी तरफ। और फिर बिजली चमकी। एक सेकेंड के लिए उसका चेहरा दिख गया और बापूराव की चीख निकल गई, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चेहरे को उसने देखा वो 2019 में गायब हुए ट्रेकर में से एक था। एक ऐसा आदमी जिसे मरे हुए 7 साल हो चुके थे। केव के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी, हवा चीख रही थी, और एंट्रेंस के बाहर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जैसे वो उन्हें देख रहा हो।
बापूराव के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कबीर, वो रोहित है, 2019 वाला रोहित। मीरा का गला सूख गया। मतलब वो मर चुका है। उसी वक्त बिजली फिर चमकी, सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने का इंतजार करना इम्पॉसिबल था। सबने डिसाइड किया कि बारिश कम होते ही निकलना होगा, लेकिन नेचर के अपने कुछ और प्लान्स थे। लगभग रात के 3 बजे जमीन हिलने लगी, पहले हल्का वाइब्रेशन, फिर जोर से क्रैक, केव के बाहर से पत्थर गिरने की आवाज आई, लैंडस्लाइड, सना चिल्लाई। सब अपने सामान उठाकर भागने लगे। केव के बाहर आते ही उन्होंने देखा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा था, पत्थर पेड़ों को कुचल रहे थे, मिट्टी का समंदर नीचे आ रहा था। सब जान बचाकर दौड़े और उस भागदौड़ में ग्रुप अलग हो गए। टीम 1 कबीर, रिया, सना। टीम 2 आरुष, देव, मीरा, यश और बाबूराव। सब जब बारिश रुकी, दोनों टीमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कबीर की टीम घंटों तक भटकती रही, तभी उन्हें एक पुरानी वॉच टावर जैसी स्ट्रक्चर दिखी, शायद ब्रिटिश टाइम की थी, हाफ ब्रोकन। अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। रिया ने डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू किए और फिर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, डेट सितंबर 2019, हेडलाइंस, मिसिंग ट्रेकिंग ग्रुप, मिस्ट्री डिपिंस। नीचे एक फोटो थी, 7 ट्रेकर्स और उनके बीच रोहित, वही आदमी। लेकिन आर्टिकल में एक शॉकिंग बात लिखी थी, रोहित कभी ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। तभी रिया को टावर के वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, ओल्ड चारकोल राइटिंग, शायद किसी ने सालों पहले लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल से बाहर का रास्ता वो दिखाता है, लेकिन सिर्फ उनको जो एक साथ रहते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, या तो रोहित हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें ट्रैप कर रहा है। उधर आरुष की टीम और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी, खाना खत्म हो चुका था, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यश मेंटली ब्रोकन था। शाम तक उन्हें फिर वही आदमी दिखा, पेड़ों के पीछे, वही कपड़े, वही चेहरा, वही साइलेंस। इस बार यश उसके पीछे भागने लगा। रुको, देव चिल्लाया, लेकिन यश नहीं रुका। अचानक वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया और यश भी। सुबह उसके पीछे दौड़े, 5 मिनट बाद यश मिला, एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर, बस एक कदम और सीधे मौत। यश रो रहा था, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। सबको डायरी की लास्ट लाइन याद आ गई, उसके पीछे मत जाना। 2 दिन हो चुके थे, सब थक चुके थे, होप ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तभी दोनों टीम्स को एक ही जगह एक ही चीज मिली, पत्थरों का बना हुआ एक एरो, डायरेक्शन दिखाता हुआ। कबीर की टीम ने भी देखा, आरुष की टीम ने भी देखा और दोनों एरोस के सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। सबने डिसाइड किया कि अब वो एरो को फॉलो करके ही जाएंगे। लगभग 4 घंटे चलने के बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल गई। सब इमोशनल हो गए, किसी ने किसी को हग किया, किसी ने किसी के आंखों में आंसू देखे। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जंगल से निकलना। एरो फॉलो करते गए। शाम के वक्त उन्हें कुछ दिखाई दिया, दूर, बहुत दूर, एक रोड, एक्चुअल रोड, सिविलाइजेशन, लाइफ, सेफ्टी, सब बाहर आने लगे और 10 मिनट बाद वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे। सब सेफ थे, रेस्क्यू टीम मिल गई, हॉस्पिटल चेकअप हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मानता कि जंगल में उन्हें एक ऐसा आदमी देखा जो शायद सालों पहले गायब हो चुका था। 3 दिन बाद मुंबई में लाइफ नॉर्मल होने लगी। कबीर ऑफिस में था, तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई, अननोन सेंडर, सब्जेक्ट था थैंक यू। कबीर ने मेल खोला, अंदर एक फोटो थी, ग्रुप फोटो, जंगल वाली। सब 7 लोग खड़े थे स्माइल करते हुए, लेकिन कबीर का दिल रुक गया। फोटो में 8 लोग थे, 7 ट्रेकर्स और उनके पीछे रोहित, वही रोहित, 2019 वाला ट्रेकर। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, इस बार सब घर पहुंच गए। कबीर का हाथ कांप गया, उसने सेंडर्स की डिटेल चेक की, ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कभी बनी ही नहीं।
उसने फोटो जूम की और उस वक्त उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी ठंड कर गई। रोहित कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कबीर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ महीने बाद बापूराव फिर से उस जंगल में गया अकेले। उसने उस जगह पर फूल रखे जहां 2019 वाले ट्रेकर्स लॉस्ट हुए थे। वापस मुड़ते वक्त उसने दूर पेड़ों के बीच एक आदमी देखा, वही ट्रेकिंग जैकेट, वही चेहरा, वही स्माइल। बापूराव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तू भी जा सकता है बेटा। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और जब उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था, एक रास्ता जो मैप्स पर आज भी नहीं मिलता। हर जंगल में बहुत भूत नहीं होते, हर जंगल में भूत नहीं होते। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने का इंतजार करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका था, सिर्फ एक बंदा लौटा था और ये सात लोग उसी ट्रैक पर जा गए थे और सातों के सातों वापस आ गए। कभी कभी कुछ एनर्जीज हमें हमारी मुसीबत से बाहर भी निकालती है और कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें मुसीबत में भी डाल देती है। तो ऐसे वक्त हमेशा एडवेंचर के बारे में ना सोचे, अपने दिल के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM, कहानियों के गुल्लक। मस्त मस्त गाने सुनिए, मस्त मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी हमारी ट्रेकिंग वाली। हम में से कई सारे लोग ट्रेक पर जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ। तो यही कहानी है एक नए एडवेंचर की, एक नए एक्सपीरियंस की। तो चलिए सुनते हैं 7 अनजान मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसे नहीं होते, और कुछ सफर बिल्कुल प्लान की तरह होते हैं। सितंबर का महीना था, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स पैक्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डेडलाइंस, रोड्स पर ट्रैफिक, और इन सब के बीच 7 लोग थे जो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ वक्त के लिए भागना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रेक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया था। ट्रेक का नाम था सीक्रेट वैली, लोकेशन सीक्रेट, रूट सीक्रेट, और ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एडवेंचर गारंटीड। सैटरडे सुबह 5 बजे मुंबई सेंट्रल के बाहर सब पहली बार मिले। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। पहले पहुंचा 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस लैपटॉप और कोडिंग से भरी जिंदगी। उसके बाद रिया आई, शोल्डर पर कैमरा, फेस पर कॉन्फिडेंस, फोटोग्राफी उसका पैशन था। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आ गए, आरुष, मीरा, देव, सना और हाँ यश भी। सब ने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी। तो हम ही हैं सीक्रेट वैली वाले, देव ने पूछा। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हो गई, और कुछ ही देर में ट्रैवलर वैन उन्हें लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी। 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों से बीच गुजरती रही। गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, और स्ट्रेंजेस धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। कबीर और रिया की बातें सबसे ज्यादा हो रही थी, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, लाइफ, ड्रीम्स। पता नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए। गाड़ी फाइनली एक छोटे से गांव में रुक गई। विलेज इतना रिमोट था कि मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था, सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और अजीब सी सीरियस आंखें। मैं बाप उरा हूं, गाइड। उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोला, जो बोलो वही करना। देव हंस दिया, लगता है डेंजरस ट्रैक है। बापूराव ने जवाब दिया, जंगल में शॉर्टकट मत लेना, समझे। उस वक्त किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन शाम तक सबको समझ आने वाला था कि वो बार बार शॉर्टकट का नाम क्यों ले रहा था। ट्रैक शुरू हुई,

नेचर ब्रेथ टेकिंग थी, हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, बर्ड साउंड्स, सब एंजॉय कर रहे थे। रिया हर 10 मिनट में फोटो क्लिक कर रही थी, तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। गाइस गाइस गाइस गाइस गाइस, सब रुक गए। जमीन पर एक पुराना DSLR कैमरा पड़ा था, पूरा डस्टी, जैसे सालों से यहां हो। कबीर ने उठाया, ये यहां क्या कर रहा है? देव क्यूरियोसिटी में था, मेमोरी कार्ड चेक करने लगा। कैमरा डेट था लेकिन कार्ड बच गया था। देव ने पूछा, इसे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर उस कार्ड को कनेक्ट किया, फोटोज ओपन हुई और सब चुप हो गए। फोटोज में एक ट्रेकिंग ग्रुप था, 7 लोग, एग्जैक्टली इसी जंगल में, इसी रूट पर, इसी वैली में, सब स्माइल कर रहे थे, एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन लास्ट फोटो में सबके रोंगटे खड़े हो गए। लास्ट फोटो में सिर्फ एक आदमी था, बाकी 6 लोग गायब थे। डेट लिखी थी September 2019। मीरा ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। लंच के दौरान वीक नेटवर्क मिल गया। सना ने गूगल सर्च की और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। 2019 में इसी एरिया में एक ट्रेकिंग ग्रुप मिसिंग हुआ था। 7 लोग गए थे इस ट्रैक पर, सिर्फ एक वापस आया, बाकी कभी नहीं मिले। न्यूज आर्टिकल में लोकेशन भी सेम थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। देव बोला, कोइंसिडेंस है, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। बापूराव दूर खड़ा सब सुन रहा था, उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। कबीर उसके पास गया, अंकल आपको कुछ पता है क्या वो ग्रुप के बारे में? बापूराव कुछ सेकेंड तक चुप रहा, फिर बोला, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और आगे चलो। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी से छुपा नहीं। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे रास्ते 2 हिस्सों में बंटने वाले थे, एक सेफ ट्रायल और एक शॉर्टकट। वही शॉर्टकट जिसने सालों पहले 6 लोगों को अपने अंदर समा लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे थे एक ट्रेकिंग की कहानी, इस ट्रेकिंग की कहानी में कैसे 7 अनजान लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान बस इसी एक चीज के लिए आए थे कि वो एक नया एक्सपीरियंस देख पाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस महसूस कर पाएंगे, एक नई ट्रेकिंग पर जाएंगे, एक नई एनर्जी लाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको तो ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि उन्हें लगने लगा कि कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया अब। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM और अपने मनपसंद गानों को।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक आचार्य 90 FM पर। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेक अभी आगे जाके और मुश्किल होने वाली थी, तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। हवा में ठंडी नमी थी। जंगल और गहना होता जा रहा था। रास्ते धीरे धीरे मुश्किल होने लगे थे। कुछ देर बाद सब एक जंक्शन पर पहुंचे। रास्ते 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक वाइट ट्रायल और एक बहुत ही नैरो जंगल पाथ। बापूराव तुरंत बोला, सब लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन आरुष ने राइट साइड वाले पाथ को देखा, ये शॉर्टकट लग रहा है। बापूराव ने तुरंत मना किया, नहीं। यश हंस पड़ा, गाइड अंकल फिर से शॉर्टकट से डरा रहे हैं क्या? देव भी बोल पड़ा, मैप के हिसाब से तो ये रास्ता भी वैली में ही जा रहा है। बापूराव के चेहरा सीरियस हो गया, मैं 30 साल से यहाँ का गाइड हूँ, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन आरुष को यकीन था कि वो सही है। अंकल, अननेसेसरी लॉन्ग रूट क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। कबीर और सना गाइड की साइड थे, लेकिन आरुष, देव और यश शॉर्टकट के फेवर में। रिया न्यूट्रल थी और मीरा कंफ्यूज्ड। आखिर प्रेशर में आकर बापूराव मान गया, लेकिन उसने एक बात कही, एक ऐसी बात जो बाद में सबको याद आने वाली थी। उसने धीरे से कहा, जंगल हर बार माफ नहीं करता। शॉर्टकट ऑफिशियली सिर्फ 40 मिनट का था, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको अजीब लगने लगा। कबीर ने GPS चेक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई। कंपास ऐप भी वियर्ड डायरेक्शन दिखा रहा था। सना ने अपना फोन निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम। देव ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है जंगल एवेंजर्स लेवल का मैग्नेटिक फील्ड रखता है। किसी ने कहा, नहीं हंसना, बस हो गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। बापूराव बार बार आसपास देख रहा था, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। बापूराव ने धीरे से कहा, हम गलत जगह पे आ गए हैं। सब चुप। मतलब मैं भी नहीं जानता हम कहाँ हैं। एक सेकंड के लिए पूरे जंगल में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। गाइड जो 30 साल से यहां ट्रेक करा रहा था, वो खुद खो गया था। शाम होने लगी थी, क्लाउड्स नीचे उतरने लगे थे, विजिबिलिटी कम होने लगी थी। अब वापस जाना इम्पॉसिबल था। ग्रुप ने एक छोटी सी फ्लैट जगह देखकर कैंप लगाया, टेंट सेट्स हुए, स्मॉल बॉनफायर जलाया। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके अंदर फियर था, एक डर था। डिनर के वक्त भी यूजुअल जोक्स गायब थे। रिया ने धीरे से पूछा, बापूराव सच सच बताओ, 2019 में क्या हुआ था? बापूराव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ। बॉनफायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ग्रुप का गाइड नहीं था। सब फ्रीज हो गए। मतलब मैं उसी ग्रुप का गाइड था, उन्होंने भी शॉर्टकट ही लिया था। देव की आवाज निकल गई, फिर? बापूराव ने नीचे देखा, 6 लोग कभी नहीं मिले। बॉनफायर के पास साइलेंस छा गया। उस रात लगभग 1 बजे सब अपने टेंट्स में सो रहे थे, तभी क्रंच क्रंच क्रंच किसी के छिलने की आवाज आई। कबीर की आंख खुल गई, उसने टेंट से बाहर झांका, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दूसरी साइड से, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई कैंप के पास घूम रहा हो। कबीर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। उसके पीछे देव भी आ गया। देखा तूने? कबीर ने सिर हिलाया। दोनों ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और डार्कनेस। तभी देव का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर, क्या हुआ? उधर देख, लगभग 50 मीटर दूर
पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी। बस उसकी परछाई दिख रही थी, मोशनलेस, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च पर फोकस की और उसी सेकंड वो आदमी गायब हो गया, बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। फिर सुबह हुई। सुबह सबने डिसाइड किया कि बिना रुके जंगल से बाहर निकलना है। टेंशन अपने पीक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक क्लिफ मिला, डेंजरस, बहुत डेंजरस। नीचे हजारों की फिटकी खाई। रास्ता उस क्लिफ के एज से जा रहा था। सब बहुत केयरफुली चल रहे थे। सबसे आगे यश था। उसका कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ था। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके पैर के नीचे पत्थर टूट गया, क्रैक। सब कुछ एक सेकंड में हुआ। यश सीधा नीचे चला गया। उसका शरीर हवा में लटक गया। नीचे सिर्फ मौत थी। हजारों फीट की खाई। उसका हाथ एक ट्री रूट में अटक गया। बस वही उसे जिंदा रखे हुए था। यश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर ग्रिप छूट जाती तो बॉडी भी नहीं मिलती। रिया रो पड़ी। मीरा पैनिक में आ गई। सना चिल्लाई, कोई रोप निकालो। कबीर और आरुष तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इमरजेंसी रोप निकाली, लेकिन प्रॉब्लम थी, रूट कभी भी टूट सकती थी। यश की ग्रिप स्लिप हो रही थी। उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ मौत को सामने देख रहा था। कबीर क्लिफ की एज तक गया। सबने उसे पकड़ा। उसने रोप यश की तरफ फेंकी। पहली बार मिस, दूसरी बार मिस, तीसरी बार वो रोप यश ने पकड़ ली। लेकिन तभी जिस रूट को पकड़कर वो लटका था, वो क्रैक करने लगी। कबीर, रूट टूट गई और यश नीचे गिरने लगा। लेकिन उसी सेकंड रोप टाइट हुई। कबीर और आरुष पूरी ताकत लगाकर रोप खींच रहे थे। उनके हाथ जल रहे थे, मसल शेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली यश को ऊपर खींच लिया गया। जैसे वो सेफ ग्राउंड पर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। आज उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सना को कुछ और नजर आया था, कुछ ऐसा जिसने 2019 वाली मिस्ट्री को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। और उस डिस्कवरी के बाद जंगल के हर राज खुलना शुरू हो गए थे। यश अभी भी शॉक में था, उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसे पानी दिया। तू ठीक है ना? यश ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, लेकिन सना की नजर अभी भी क्लिफ के नीचे थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। कबीर, एक मिनट इधर आओ। कबीर एज पर आया, नीचे देखा और उसका गला सूख गया। लगभग 200 फीट नीचे पेड़ों और पत्थरों के बीच कुछ सफेद सा पड़ा था। पहले तो लगा पत्थर होगा, लेकिन जब रिया ने कैमरे का जूम यूज किया, सबकी सांसें रुक गई। वो एक स्केलेटन था, इंसानी हड्डियों का ढांचा, और उसके पास एक फैडेड ट्रेकिंग बैकपैक। बैग पर पूरी धूल जमे हुई थी, लेकिन एक नाम अब भी पढ़ने लायक था, वीकेंड वंडरर्स। वही नाम जो 2019 वाले मिसिंग ट्रैक के ग्रुप का था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। देव ने धीरे से कहा, मतलब उनमें से कोई यहां गिरा था? बापूराव ने आंखें बंद कर दी, जैसे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक वीकेंड वंडरर्स करके ग्रुप था जो इनके पहले उसे ट्रैकिंग पर आया था, और उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन मिला था, 6 लोग गायब थे, लेकिन उसमें से दूसरे पर्सन का अब
मानवीय शरीर ढांचा मिला है। ये देखकर इन सात लोगों को बहुत डर आया है। कहानी का अगला हिस्सा हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के उल्लेख।

स्वागत है आपका आचार्य 90 एफएम में। ब्रेक के बाद शाम होने से पहले ग्रुप एक छोटी सी जगह पर रुक गया। सब आंसर्स चाहते थे। कबीर ने सीधे पूछा, बापूराव आप सच बताओ। बापूराव ने कुछ देर तक बोनफायर की आग को देखा और फिर बोला, 2019 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। सात लोग थे, यंग थे, एक्साइटेड थे, एडवेंचर के लिए पागल थे, बिल्कुल तुम लोगों के जैसे। उनकी आवाज भर गई। मैं गाइड था, मैं उन्हें शॉर्टकट लेने से रोकता रहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में हवा चल रही थी और बापूराव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रहा था। हम रास्ता भटक गए थे। दो दिन जंगल में घूमते रहे। एक एक करके लोग गायब होने लगे। मीरा ने पूछा, मतलब? बापूराव ने धीरे से कहा, पता नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे, जैसे जंगल उन्हें निगल लिया हो। सबके शरीर ठंड पड़ गए थे। उस रात मौसम अचानक से खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। बापूराव चिल्लाया, हमें शेल्टर ढूंढना होगा। ग्रुप ने टॉर्च निकाली। लगभग आधे घंटे बाद उनको एक केव मिली। बहुत पुरानी केव, अंधेरी और अजीब सी ठंडी। सब अंदर चले गए। बारिश बाहर टूट कर गिर रही थी। देव ने फ्लैश लाइट घुमाई और फिर वो फ्रीज हो गया। गाइस, सब उसकी तरफ देखा। केव के कोने में तीन पुराने बैकपैक्स पड़े थे, धूल से भरे हुए, और उसके पास एक रस्टेड टॉर्च और एक डायरी। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। रिया ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था अमन वर्मा, वही मिसिंग ग्रुप का मेंबर। रिया ने डायरी खोली। पेज गीले और पुराने थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ भी था जिसे पढ़ा जा सकता था। उसने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डे वन, हम शॉर्टकट में आ गए हैं। गाइड टेंशन में है, पर सब ठीक लग रहा है। डे टू, GPS काम नहीं कर रहा, हम लॉस्ट हो गए, सब नर्वस है। डे थ्री, कल रात किसी ने फुटस्टेप सुनी। हमने सोचा जानवर होगा, लेकिन फुटप्रिंट्स इंसान के थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। रिया ने अगला पेज खोला। आज रोहित गायब हो गया है। सुबह उसका टेंट खाली मिला। हमने हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सना का गला सूख गया। मेरा डायरी पकड़ने वाले हाथ को देख रही थी, उसमें हल्का सा कांप था। रिया ने अगला पेज खोला। हम सबको लगता है कि कोई हमें देख रहा है। रात को पेड़ों के बीच एक आदमी दिखता है। जब पास जाते हैं तो गायब हो जाता है। देव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। पेड़ के पीछे वाला आदमी? कबीर ने धीरे से हमें सर हिलाया। डायरी के लास्ट पेज सबसे अजीब था। उस पर लिखा था, अगर किसी को ये डायरी मिले, शॉर्टकट मत लेना, और अगर पेड़ों के बीच वो आदमी दिखे तो उसके पीछे मत जाना, वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा और अंदर ले जाएगा। उसके बाद सेंटेंस अधूरा था, पेज पर खून जैसा लगा था, और वो डायरी वहीं खत्म हो गई। उसी वक्त केव के बाहर से आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सब फ्रीज हो गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी, बहुत पास, बहुत ही पास। क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो और उनका इंतजार कर रहा हो। रिया ने फ्लैशलाइट एंट्रेंस की तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। एंट्रेंस के बाहर बारिश में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा डार्कनेस में छुपा हुआ था और वो सीधा केव के अंदर देख रहा था उसकी तरफ। और फिर बिजली चमकी। एक सेकेंड के लिए उसका चेहरा दिख गया और बापूराव की चीख निकल गई, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चेहरे को उसने देखा वो 2019 में गायब हुए ट्रेकर में से एक था। एक ऐसा आदमी जिसे मरे हुए 7 साल हो चुके थे। केव के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी, हवा चीख रही थी, और एंट्रेंस के बाहर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जैसे वो उन्हें देख रहा हो।
बापूराव के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कबीर, वो रोहित है, 2019 वाला रोहित। मीरा का गला सूख गया। मतलब वो मर चुका है। उसी वक्त बिजली फिर चमकी। सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने का इंतजार करना इम्पॉसिबल था। सबने डिसाइड किया कि बारिश कम होते ही निकलना होगा, लेकिन नेचर के अपने कुछ और प्लान्स थे। लगभग रात के 3 बजे जमीन हिलने लगी। पहले हल्का वाइब्रेशन, फिर जोर से क्रैक। केव के बाहर से पत्थर गिरने की आवाज आई, लैंडस्लाइड, सना चिल्लाई। सब अपने सामान उठाकर भागने लगे। केव के बाहर आते ही उन्होंने देखा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा था। पत्थर पेड़ों को कुचल रहे थे, मिट्टी का समंदर नीचे आ रहा था। सब जान बचाकर दौड़े और उस भागदौड़ में ग्रुप अलग हो गए। टीम 1 कबीर, रिया, सना। टीम 2 आरुष, देव, मीरा, यश और बाबूराव। सब जब बारिश रुकी, दोनों टीमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कबीर की टीम घंटों तक भटकती रही, तभी उन्हें एक पुरानी वॉच टावर जैसी स्ट्रक्चर दिखी, शायद ब्रिटिश टाइम की थी, हाफ ब्रोकन। अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। रिया ने डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू किए और फिर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, डेट सितंबर 2019, हेडलाइंस, मिसिंग ट्रेकिंग ग्रुप, मिस्ट्री डिपिंस। नीचे एक फोटो थी, 7 ट्रेकर्स और उनके बीच रोहित, वही आदमी। लेकिन आर्टिकल में एक शॉकिंग बात लिखी थी, रोहित कभी ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। तभी रिया को टावर के वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, ओल्ड चारकोल राइटिंग, शायद किसी ने सालों पहले लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल से बाहर का रास्ता वो दिखाता है, लेकिन सिर्फ उनको जो एक साथ रहते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, या तो रोहित हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें ट्रैप कर रहा है। उधर आरुष की टीम और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी, खाना खत्म हो चुका था, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यश मेंटली ब्रोकन था। शाम तक उन्हें फिर वही आदमी दिखा, पेड़ों के पीछे, वही कपड़े, वही चेहरा, वही साइलेंस। इस बार यश उसके पीछे भागने लगा। रुको, देव चिल्लाया, लेकिन यश नहीं रुका। अचानक वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया और यश भी। सुबह उसके पीछे दौड़े, 5 मिनट बाद यश मिला, एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर, बस एक कदम और सीधे मौत। यश रो रहा था, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। सबको डायरी की लास्ट लाइन याद आ गई, उसके पीछे मत जाना। 2 दिन हो चुके थे, सब थक चुके थे, होप ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तभी दोनों टीम्स को एक ही जगह एक ही चीज मिली, पत्थरों का बना हुआ एक एरो, डायरेक्शन दिखाता हुआ। कबीर की टीम ने भी देखा, आरुष की टीम ने भी देखा और दोनों एरोस के सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। सबने डिसाइड किया कि अब वो एरो को फॉलो करके ही जाएंगे। लगभग 4 घंटे चलने के बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल गई। सब इमोशनल हो गए, किसी ने किसी को हग किया, किसी ने किसी के आंखों में आंसू देखे। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जंगल से निकलना। एरो फॉलो करते गए। शाम के वक्त उन्हें कुछ दिखाई दिया, दूर, बहुत दूर, एक रोड, एक्चुअल रोड, सिविलाइजेशन, लाइफ, सेफ्टी, सब बाहर आने लगे और 10 मिनट बाद वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे। सब सेफ थे, रेस्क्यू टीम मिल गई, हॉस्पिटल चेकअप हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मानता कि जंगल में उन्हें एक ऐसा आदमी देखा जो शायद सालों पहले गायब हो चुका था। 3 दिन बाद मुंबई में लाइफ नॉर्मल होने लगी। कबीर ऑफिस में था, तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई, अननोन सेंडर, सब्जेक्ट था थैंक यू। कबीर ने मेल खोला, अंदर एक फोटो थी, ग्रुप फोटो, जंगल वाली। सब 7 लोग खड़े थे स्माइल करते हुए, लेकिन कबीर का दिल रुक गया। फोटो में 8 लोग थे, 7 ट्रेकर्स और उनके पीछे रोहित, वही रोहित, 2019 वाला ट्रेकर। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, इस बार सब घर पहुंच गए। कबीर का हाथ कांप गया, उसने सेंडर्स की डिटेल चेक की, ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कभी बनी ही नहीं।
उसने फोटो जूम की और उस वक्त उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी ठंड कर गई। रोहित कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कबीर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ महीने बाद बापूराव फिर से उस जंगल में गया अकेले। उसने उस जगह पर फूल रखे जहां 2019 वाले ट्रेकर्स लॉस्ट हुए थे। वापस मुड़ते वक्त उसने दूर पेड़ों के बीच एक आदमी देखा, वही ट्रेकिंग जैकेट, वही चेहरा, वही स्माइल। बापूराव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तू भी जा सकता है बेटा। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और जब उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था, एक रास्ता जो मैप्स पर आज भी नहीं मिलता। हर जंगल में बहुत भूत नहीं होते, हर जंगल में भूत नहीं होते। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने का इंतजार करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका था, सिर्फ एक बंदा लौटा था और ये सात लोग उसी ट्रैक पर जा गए थे और सातों के सातों वापस आ गए। कभी कभी कुछ एनर्जीज हमें हमारी मुसीबत से बाहर भी निकालती है और कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें मुसीबत में भी डाल देती है। तो ऐसे वक्त हमेशा एडवेंचर के बारे में ना सोचे, अपने दिल के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के गुल्लक। मस्त मस्त गाने सुनिए, मस्त मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। गांव मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और खास करके गांव की नदी, वो नदी जिससे न जाने हमारे कितने बचपन के सपने जुड़े होते हैं, कितनी कहानियां जुड़ी होती है। जब हम परेशान हो जाते हैं तो नदी किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। कभी अगर एक्साइटेड होते हैं तो उसी नदी में डुबकी लगाते हैं और स्विमिंग करने लग जाते हैं। तो गांव की नदी से एक खास रिश्ता जरूर होता है। तो ऐसी कहानी एक लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए, नदी के पार वाला सपना। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भवानीपुर में सुबह का मतलब अलार्म नहीं होता था। सुबह का मतलब होता था मुर्गे की आवाज, कुकड़ुक कु, सुबह 4:30। मिट्टी की खुशबू और दूध वाले के बर्तनों की खनक, और साथ ही साथ वही गांव में रहते थे केशव और उसकी पत्नी गंगा। उनका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, छत पे पुराने टीन के पत्रे और आंगन में एक नीम का पेड़। पर उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी और वो थी प्यार। केशव ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस तीसरी तक स्कूल गया था। उसके बाद पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। अब वो गांव के मंदी में बोरियां उठाता था, कभी किसी के खेतों में हल चलाता था, कभी ट्रैक्टर चलाता था। महीने के मुश्किल से 15,000 रुपए कमा पाता था। और गंगा भी अनपढ़ी थी, नाम लिखना तक नहीं आता था, पर दिल समंदर से भी ज्यादा बड़ा था। वो रोज सुबह 4 बजे उठती थी, पहले चूल्हा जलाती थी, फिर पानी भरने को किलोमीटर तक दूर कुएं तक जाती थी, कपड़े धोती थी, बकरियों को चारा देती थी और शाम तक घर संभालती थी। दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। एक चीज थी जो गंगा को रोज नोटिस होती थी, केशव का थका हुआ चेहरा। रोज सुबह वो साइकिल लेकर मंडी जाता था। मंडी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर थी। चाहे बरसात हो या हो फिर गर्मी या सर्द हवा, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो कि चाहे कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, केशव साइकिल चलाता ही रहता। और कई बार उसकी साइकिल रास्ते में खराब भी हो जाती थी, कभी चैन टूट जाती, कभी टायर पंक्चर हो जाता। एक बार तो तेज बारिश में वो गिर भी गया था। उस दिन रात को गंगा ने उसके पैर दबाते हुए पूछा था, बहुत दर्द हो रहा है क्या? केशव मुस्कुरा दिया, अरे पगली, आदमी का शरीर काम करेगा तभी तो घर चलेगा। पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे की थकान गंगा देख चुकी थी। उस रात गंगा ने पहली बार एक सपना देखा, अपने पति को बाइक पर बैठकर हंसते हुए देखने का सपना। अगली सुबह केशव मंडी चला गया, गंगा रोटियां बना रही थी, तब उसकी नजर पुराने स्टील के डब्बे पर पड़ी। उसने डब्बा उठाया, साफ किया और धीरे से बोली, इसमें जमा करूंगी पैसा। उस दिन से उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो केशव को एक बाइक गिफ्ट करके रहेगी। पर प्रॉब्लम यह थी कि घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता था। 15,000 में राशन, बिजली, दवाई, कपड़े, ये सब कुछ मैनेज करना मुश्किल था। लेकिन गंगा ने ठान लिया था और उसने खुद पर खर्चा करना भी कम कर दिया था। नई साड़ी बाद में ले लेंगे, मेला जाना बंद, चूड़ियां भी बाद में ली जाएगी। कभी कभी तो वो अपनी चाय में चीनी कम डाल देती थी ताकि 1-2 रुपए बचा सके। केशव को कभी पता नहीं चला, हर महीने वो किसी ना किसी तरीके से 2,000 रुपए बचा लेती। कभी दूध बेचकर, कभी दूसरों के घर पापड़ बनाकर, कभी सिलाई करके, और वो पैसे छुपा देती उस स्टील के डब्बे में। हर बार पैसा डालते वक्त वो डब्बे को हाथ लगाकर बोलती, एक दिन मेरा केशव बाइक पे जाएगा, साइकिल पे नहीं। समय धीरे धीरे गुजर गया, 3 साल बीत गए, पूरे
तीन साल तक गंगा ने हर महीने पैसे बचाए। कभी बुखार, कभी सर दर्द, इन सारी हालतों में काम किया। कभी कभी भूखी भी सोई। एक बार केशव ने कहा भी, गंगा तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? वो हंस पड़ी, बस थोड़ी थकान है। उसने कभी सच नहीं बताया। एक दिन गांव में मेला लगा, सारी औरतें सच धज कर गई, चंदा भी गई। चंदा गंगा की सबसे अच्छी दोस्त थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, गांव के लोगों के लेटर्स भी वो पढ़ती थी। चंदा ने पूछा, तू मेला नहीं आएगी? गंगा ने झूठ बोला, मन नहीं है। असल में उसके पास पैसा था, पर वो पैसा उसके सपने का था। उस रात जब केशव सो गया, गंगा ने डब्बा खोला। उसने धीरे धीरे पैसे गिनने शुरू किए। 72,000 रुपए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस थोड़ा और फिर मेरे केशव की बाइक आ जाएगी। फिर मेरा केशव बाइक पर बैठकर सारा गांव घूमेगा, अपने काम पर जाएगा, मुझे अपने बाइक पर पीछे बिठाकर मेला घुमाने लेके जाएगा। न जाने ऐसे कितने सपनों में गंगा खो गई। दोस्तों, गांव की कहानियां कितनी प्यारी होती है, कितनी सिंपल होती है, कितनी सरल होती है, लेकिन इन कहानियों के पीछे कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत उस किरदार को उठानी पड़ती है जो वो कहानियों को जीता है। तो इस कहानी का अगला भाग सुनेंगे हम इस ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 FM में। हम सुन रहे थे नदी के पार वाला सपना और हमने देखा और हमने सुना कि कैसे गंगा ने 72,000 रुपए बचा लिए अपने केशव के लिए। और अब देखते हैं कि किस तरीके से गंगा केशव को बाइक गिफ्ट करेगी। उसी गांव में एक लड़का भी रहता था, उसका नाम था अजय। अजय थोड़ा गलत व्यवहार वाला लड़का था और लोगों गलत लोगों के साथ रहकर वो चोरी चकारी शराब पीना जुआ खेलना कर्जा न जाने कितनी कितनी चीजों में फंसा हुआ था। उसने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, गांव वाले उससे दूर रहते थे। एक दिन वो रात को शराब के नशे में घूम रहा था, तब उसने गंगा को स्टील का डब्बा छुपाते हुए देख लिया। अजय की नजर पैसे पर पड़ गई। उसने सोचा लगता है काफी पैसा है। उस रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी और वो था डब्बा। उस रात तेज हवा चली, केशव थककर गहरी नींद में था, गंगा भी सो गई थी। आधी रात को अजय धीरे से घर के पीछे अंदर घुसा। उसने चूल्हे के पास मिट्टी हटाई और उसे स्टील का डब्बा मिल गया। उसका दिल जोर जोर से धक धक धक धक धक धक कर रहा था। बस एक बार ये पैसा मिल जाए। वो डब्बा लेकर भाग गया। सुबह गंगा ने जैसे ही डब्बा चेक किया, उसकी सांसें रुक गई। डब्बा गायब था। पहले उसे लगा शायद कहीं और रखा होगा। उसने पूरा घर उल्टा दिया, आंगन छान लिया, चूल्हा भी पूरी तरीके से खोद दिया, बिस्तर पलट दिया, सब कुछ कर लिया, पर डब्बा नहीं मिला। उसके पैर कांपने लगे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। पर उसी वक्त केशव घर के अंदर आ गया। गंगा तुरंत आंसू पहुंचने लगी और चुप हो गई। क्या हुआ, केशव ने पूछा। कुछ नहीं, गंगा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तू रो रही है, केशव ने बोला। नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही, गंगा ने जवाब दिया। केशव ने उसका माथा छुआ। तबीयत खराब है क्या, गंगा बस झूठी मुस्कान देकर रह गई। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया दिल टूटने की आवाज सच में होती है। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गंगा चुपचाप घर से निकली, उसके पैर सीधा गांव के बाहर वाली नदी की तरफ बढ़ने लगे। ये वही जगह थी जहां वो बचपन में बैठा करती थी। नदी के पास पहुंचते ही वो टूट गई। वो इतनी घुटन भरी थी उसके अंदर कि जैसे वो नदी के पास पहुंची, वो जोर जोर से रोने लगी। नदी माँ, मैंने क्या गलत किया, उसकी आवाज हवा में घूमने लगी। 3 साल तक मैंने पैसे जोड़े, मैं बस अपने पति को खुश देखना चाहती थी। उसने कभी

कुछ मांगा नहीं, बस एक बाइक देना चाहती थी उसको मैं। वो रोते रोते ये सारी बातें बोलती गई। मैं उसे एक तोहफा देना चाहती थी, पर सब खत्म हो गया, सब बिखर गया। उसे नहीं पता था कि गंगा जब ये सारी बातें कर रही थी, कुछ दूर पेड़ के पीछे अजय खड़ा सब सुन रहा था। उसके हाथ में वही डब्बा था और पहली बार उसे अपनी चोरी पर शर्म आ रही थी। अजय चुपचाप गंगा की बातें सुनता रहा। हर लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसने डब्बा खोला, अंदर साफ सुथरे नोट थे, कुछ पुराने कुछ नए, और एक छोटी सी कागज की पर्ची। उस पर गंगा ने अपनी तरफ से कुछ बना रखा था, एक आदमी, एक बाइक और उसके पास दिल का निशान। अजय की आंखें भर गई। उसे याद आया कि उसकी माँ भी उसके लिए पैसे बचाती थी, और आज वो दूसरों की उम्मीद चुरा रहा था। नदी के किनारे गंगा अब भी रो रही थी। भगवान, बस मुझे मेरा सपना दे दो, मुझे मेरा सपना लौटा दो। अजय का दिल कांप गया। उसने धीरे से कहा, मैं कितना गिर गया हूं। उस रात उसने पहली बार शराब की बोतल फेंक दी। रात गहरी हो चुकी थी। केशव घर के बाहर बैठा था, गंगा का इंतजार कर रहा था। तू इतनी देर तक कहां थी, केशव ने पूछा। गंगा ने झूठ बोला, चंदा के घर थी। केशव ने कुछ नहीं पूछा। रात को दोनों सो गए, और आधी रात अजय फिर उस घर के पास आया, पर इस बार चोर बनकर नहीं, पछताया हुआ इंसान बनकर। उसने धीरे से वही डब्बा उसी जगह वापस रख दिया, और उस 72,000 रुपए के साथ उसने उसमें कुछ अपने पैसे भी रख दिए, लगभग 15,000। उसने एक कागज निकाला, उस पर लिखा, माफ कर देना बहन, मैंने पाप किया, पर आपका प्यार देखकर समझ गया कि गरीबी से बड़ा गुनाह इंसानियत खोना होता है। अजय ने नोट डब्बे के नीचे रख दी और चुपचाप चला गया। अगली सुबह को क्या हुआ, ये सुनने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आ रहा है एक ब्रेक और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

0: हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सुन रहे थे कि अजय ने वो डब्बा फिर से वहां वापस लौटा दिया। अब अगली सुबह क्या हुआ तो चलिए देखते हैं अगली सुबह क्या हुआ। अगली सुबह गंगा ने आदत से डब्बे वाली जगह देखी और उसकी चीख निकल गई, हे भगवान! डब्बा वापस था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत डब्बा खोला, पैसे भी थे और पहले से ज्यादा थे। उसकी आंखें भर गई, आंसू गिरने लगे, ये कैसे हुआ? फिर उसकी नजर कागज पर पड़ी, पर वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो चिट्ठी पढ़ नहीं सकती थी। उसने कागज संभाला और सीधा चंदा के घर भागी। चंदा, चंदा, चंदा बाहर आई। चंदा, ये पढ़ना, इस पे क्या लिखा? चंदा ने कागज लिया, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो वर्ड्स बोलती गई, गंगा की आंखों से आंसू बहते गए। माफ कर देना बहन, मैंने पाप किया, मैं पैसे ले गया था, पर तुम्हारी बातें सुनकर समझ गया। चंदा ने पढ़ना रोका। गंगा, तेरा पैसा किसी ने चुराया था क्या? गंगा चुप हो गई। उसने नोट को अपने सीने से लगा लिया। भगवान उस इंसान को सही रास्ता दिखाए, बस ये कहकर गंगा अपने घर आई। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई बाइक आई, काली चमकदार बाइक। केशव ने दूर से देखा और बोला, वाह क्या बाइक है। तभी गंगा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल। किधर चल? अरे बस चल। और दोनों बाइक के पास चले गए और गंगा ने कहा, अब आंख बंद करो, आंखें बंद करो। केशव ने आंखें बंद की और गंगा ने धीरे से उसका हाथ आगे खींचा और केशव के हाथ में रख दी उस बाइक की चाबी। केशव हैरान, ये क्या है? तुम्हारी बाइक। केशव हंस पड़ा, पागल है क्या? नहीं, सच में तुम्हारी बाइक है। कहां से आई ये बाइक? गंगा ने मिक्स्ड इमोशन वाली आवाज में कहा, 3 साल से पैसे जोड़ रही थी केशव। केशव चुप हो गया। दोनों के आंखों में आंसू थे, खुशी वाले थे या गम वाले थे इसका पता नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं कि दोनों बहुत खुश थे। तू मेरे लिए? गंगा मुस्कुराई। तुम रोज साइकिल पे इतना दूर जाते थे ना? केशव ने तुरंत उसके पैर छू लिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? केशव ने जवाब दिया, तू मेरी पत्नी नहीं, तू मेरी ताकत है गंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे और मेरे बारे में इतना कुछ सोचती है। और पहली बार उस वक्त केशव ने गंगा से 5 साल में पहली बार कहा, आई लव यू। उस दिन दूर से अजय सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून था। उसने पहली बार महसूस किया था कि इंसानों के पैसे नहीं, इंसानों को नीयत से अमीर होना होता है। कुछ दिनों बाद अजय ने चोरी छोड़ दी, गांव के मैकेनिक के पास काम शुरू कर दिया। लोग उस पर पहले भरोसा नहीं करते थे, पर धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। एक दिन केशव बाइक सर्विसिंग के लिए गया उसी गैरेज में जहां अजय काम करता था। अजय ने बाइक पहचान ली, वही बाइक जिसके लिए एक औरत ने 3 साल सपना देखा था। अजय की आंखें भर गई। केशव बोला, क्या हुआ? अजय हल्का सा मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं भैया, बस बाइक बहुत खास है। ये कहकर अजय अंदर चला गया। एक शाम गंगा फिर उस नदी के पास गई, पर इस बार वो रो नहीं रही थी। उसने पानी को देखकर कहा, उस दिन मैंने दर्द बताया था, आज खुशी बताने आई हूं। हवा धीरे से चली, जैसे नदी भी मुस्कुरा रही हो। दूर केशव बाइक लेकर आ रहा था। गंगा! वो हंस पड़ी और भागकर बाइक पर बैठ गई। केशव ने पूछा, कहाँ चले?
1: गंगा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जहाँ सपने पूरे होते हैं।
0: बाइक धीरे धीरे मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी
1: और पीछे
0: पीछे नदी की लहरें चुपचाप एक कहानी सुना रही थी कि सच्चा प्यार कभी चोरी नहीं होता, वो तो और बढ़ जाता है।
1: तो दोस्तों, हम सुन रहे थे नदी के पार वाला सपना, एक ऐसी कहानी जहां केशव और गंगा एक पति पत्नी हैं। एक पत्नी ने अपने पति के लिए एक सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए उसने दिलो जान से मेहनत की। उम्मीद है कि ऐसी कहानियां हमारे अगल बगल में भी होती होंगी, पर शायद हम कभी उसे देखते नहीं या महसूस नहीं कर सकते, या कभी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों को हम नज़रअंदाज करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि किसी की छोटी से छोटी मेहनत भी उस इंसान के लिए क्या मायने रखती है। तो बस आज के कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगली बार ज़रूर मिलेंगे कुछ अच्छी कहानियाँ लेकर जो आपकी दिल को छुए। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्टन दोस्त आजय शब्बीर साइनिंग ऑफ।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बे स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मोटिवेशन से भरपूर है, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संघर्ष और संघर्ष के बाद मिली हुई जीत की कहानी है। एक ऐसी जीत की कहानी जो आपके दिल में एक ऐसा सवाल छोड़ देगी, क्या हमें सच में कोशिश कितनी करनी चाहिए, ये वाला। क्योंकि हम अक्सर कोशिश नहीं करते और हमेशा ये कहते हैं यार कर लेता तो हो जाता, लेकिन काश हम चीजें करते तो रिजल्ट कुछ और होता। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है गोल्ड मेडल। सुबह के 4 बजे थे, पूरा शहर अब भी गहरी नींद में था। गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन एक पतली सी गली के छोटे से घर का दरवाजा धीरे से खुला। 17 साल का अर्जुन अपने पुराने घिसे हुए रनिंग शूज पहनकर बाहर निकला। उसके शूज के सोल 2 जगह से फट चुके थे, लेस भी अलग अलग रंग की थी। उसकी माँ पीछे से बोली, बेटा रुक। अर्जुन मुड़कर देखता है, माँ एक स्टील के ग्लास में गरम गरम दूध लेकर खड़ी थी। बस इतना ही है, घर में पी ले। अर्जुन मुस्कुरा दिया, माँ एक दिन ऐसा आएगा ना जब मैं तुझे दुनिया का सबसे महंगा दूध पिलाऊंगा। माँ हंस पड़ी, मुझे महंगा दूध नहीं चाहिए, बस तेरा नाम टीवी पर देख लूं इतना ही काफी है। ये लाइन अर्जुन के दिल में बस गई और वो दौड़ने लगा। हर सुबह 10 किलोमीटर, ना जिम, ना कोच, ना प्रोटीन, सिर्फ एक सपना, और उस सपने का नाम था गोल्ड मेडल। अर्जुन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। पापा एक ऑटो ड्राइवर थे, दिन भर मेहनत करते थे, कभी 500 रुपए तो कभी 300 रुपए कमाते थे, और कभी कभी पूरे दिन में 150 रुपए भी मिलते थे। घर में 3 लोग थे, पापा, माँ और अर्जुन। टीवी पुराना था, फ्रिज नहीं था और कूलर भी नहीं था, लेकिन घर की दीवारों पर एक फोटो जरूर लगी थी, मिल्खा सिंह की। हर रोज अर्जुन उस फोटो के सामने खड़ा होकर कहता, एक दिन मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। पापा हमेशा हंसते, बेटा सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन पेट भी भरना पड़ता है। अर्जुन सिर्फ इतना कहता अपने पापा से, पापा एक मौका दे दीजिए और फिर देखिए। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, 100 मीटर रेस का कॉम्पिटिशन भी था। सब स्टूडेंट्स नए नए शूज में आए थे, किसी ने नाइकी, किसी ने एडिडास, और अर्जुन अपने फटे पुराने हुए शूज में आया। सबने शूज को देखा और अर्जुन का मजाक बनाने लगे, सब उस पर हंस पड़े। अरे देख, गोल्ड मेडल विनर आ गया, कहीं रास्ते में शूज टूट गए तो ये तो फिनिश लाइन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन चुप था, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। रेस शुरू हुई, ऑन योर मार्क सेट, और विसल बजी, सब की तीर की तरह भागने लगे। शुरू हुई 40 मीटर तक, सब तीर की तरह भागे। शुरू के 40 मीटर तक अर्जुन पीछे था, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन आखिरी 50 मीटर में जैसे उसके पैरों में बिजली आ गई, एक एक करके सब पीछे छूट गए। और क्या, फर्स्ट पोजीशन अर्जुन, पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स टीचर भी हैरान रह गए, ये लड़का कौन है। प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया, लेकिन मेडल से ज्यादा अर्जुन को एक बात याद आ रही थी। स्पोर्ट्स टीचर ने उसे साइड में बुलाकर कहा, बेटा तेरे अंदर ना टैलेंट है, टैलेंट। पहली बार किसी को देख रहा हूं जो बिना ट्रेनिंग के इतना फास्ट भाग रहा है, कल से मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, सर फीस कितनी देनी होगी। टीचर मुस्कुरा दिए, टैलेंट की कोई फीस नहीं होती बेटा, बस तू आ जाना। उस दिन से अर्जुन की असली जर्नी शुरू हुई। अगले ही सुबह 4 बजे वो प्रैक्टिस के लिए स्कूल पहुंच गया। शाम को पापा के साथ ऑटो साफ करना, रात को पढ़ाई करना, दिन के 18 घंटे मेहनत होती थी। और 1 साल बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप, ये उसकी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी रेस थी। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट रनर्स आए थे, सबके पास कोच थे, डाइट था, रनिंग किट थी, और अर्जुन सिर्फ एक ट्रैक सूट जो स्पोर्ट्स सर ने अपनी सैलरी से खरीदा था। रेस के पहले सर ने कांधे पर हाथ रखा अर्जुन के और कहा, याद रख
रेस पैर नहीं जीतते, रेस हौसला जीतता है। और क्या, जैसे ही विसल बजी रेस शुरू हुई, पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। अर्जुन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर सबसे आगे, लेकिन अचानक उसका पुराना शू फट गया, बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया, बाकी रनर्स उसके आगे निकल गए। स्पोर्ट्स सर चीखे, अर्जुन उठ! उसके घुटने से खून निकल रहा था, दर्द बहुत था, लेकिन उसने माँ की बात याद रखी थी, मुझे बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ और दोबारा भागना शुरू किया। अब रेस जितना मुश्किल था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। फिनिश लाइन क्रॉस करते ही वो जमीन पर गिर गया। इस बार वो फर्स्ट नहीं आया, फोर्थ आया, मेडल भी नहीं मिला। रात को घर आकर वो पहली बार रोया, माँ शायद पापा सही कहते थे, ये सपना मेरे लिए नहीं है। माँ ने उसकी बात बड़ी शांति से सुनी और बाद में उसके पास बैठकर कहा, बेटा जो लोग पहली हार के बाद सपना छोड़ देते हैं उनके नाम को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो गिर कर खड़े हो जाए, भागे और अपने सपने को जीत ले, उनका नाम सारे लोग याद रखते हैं। उस रात अर्जुन ने आंसू पोंछे और एक कसम खाई, अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही हफ्ते उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे ट्रैक से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो दोस्तों, ये जो तूफान आने वाला है अर्जुन की जिंदगी में, ये कौन सा तूफान है? क्या ये अर्जुन को चैंपियन बनने से रोक देगा, या अर्जुन के पैर ही अर्जुन से छीन लेगा, जिससे उसकी भागने की क्षमता ही खत्म हो जाए, भागने की शक्ति खत्म हो जाए, या फिर घर की कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी, या फिर घर पे कोई ऐसी मुसीबत आएगी जो अर्जुन के सपने को तार तार कर देगी? ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा उस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों की गोलक।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर सुना रहा था आपको गोल्ड मेडल की कहानी। अब गोल्ड मेडल में अर्जुन जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन में हिस्सा लेता है और उसमें फोर्थ आता है, और वो मन ही मन सोचता है क्या उसके पिताजी सही कहते थे कि सपने देखना सही है लेकिन पेट भरना भी जरूरी है। लेकिन अर्जुन की माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिद को पूरा करोगे और जीतोगे एक दिन। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट रेस में हारने के बाद अर्जुन ने एक बात समझ ली थी, टैलेंट जरूरी है लेकिन टैलेंट से ज्यादा जरूरी है हिम्मत। अगले ही दिन वो सुबह 4 बजे फिर से ग्राउंड पहुंच गया। स्पोर्ट्स सर उसे देखकर मुस्कुरा दिए। मैं जानता था तू जरूर आएगा अर्जुन। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, सर इस बार सिर्फ रेस नहीं जीतनी, जिंदगी जीतनी है। सर ने उसके कांधे पर हाथ रखा और कहा, तो फिर आज से ही असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब रूटीन और भी मुश्किल हो गया। सुबह 4 से 7 प्रैक्टिस होती, फिर स्कूल होता, शाम को पापा के साथ ऑटो चलाने में मदद होती और रात को पढ़ाई, और फिर स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। स्पोर्ट्स सर उसे हर दिन एक ही बात बोलते, बॉडी थकने से पहले दिमाग हार मानता है अर्जुन। और अर्जुन धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे तेज रनर बनने लगा। उसने अपने सर की कही हुई सारी बातों को तवज्जो दी, उनको मानना शुरू किया और सर की बताई हुई ट्रेनिंग से ही वो सारी चीजें करने लगा। एक दिन स्पोर्ट फेडरेशन के सेलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट में आए थे, स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स होने वाले थे। ग्राउंड में 200 से ज्यादा एथलीट्स थे, सबके पास ब्रांडेड किट्स थी, न्यूट्रिशंस थे, प्रोफेशनल कोचेस थे। अर्जुन के पास सिर्फ एक पानी और माँ के हाथ के बने 2 पराठे। एक लड़के ने हंसकर कहा, भाई पिकनिक पे आया है क्या? दूसरा बोला, गोल्ड मेडल व्हाट्सएप पे मिलता है क्या? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हेडफोन लगाए, आंखें बंद की और माँ की आवाज याद की। बस तेरा नाम टीवी पे देखना है, बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। ट्रायल रेस शुरू हुई, विसल बजी, सब रॉकेट की तरह निकले। शुरू के 100 मीटर में अर्जुन तीसरे नंबर पे था, 150 मीटर 200 मीटर उसने स्पीड बढ़ाई, 250 मीटर अब वो दूसरे नंबर पर जा गया, और आखिर के 100 मीटर में पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर जोर से चिल्लाए, लेन नंबर 4 अर्जुन अनबिलीवेबल कमबैक और फर्स्ट पोजीशन। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स सर की आंखों में आंसू आ गए, कांग्रेचुलेशंस, तुम स्टेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गए। अर्जुन ने सबसे पहले माँ को फोन किया, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर माँ रो पड़ी, बेटा आज लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। स्टेट चैंपियनशिप से सिर्फ 10 दिन पहले पापा का ऑटो एक ट्रक से टकरा गया, एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट। पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, घर में एक भी रुपया नहीं था। माँ अपनी शादी के कंगन लेकर ज्वेलरी के

ज्वेलर के पास गई। ज्वेलर बोला, बस इतने ही मिलेंगे। माँ चुपचाप मान गई। अर्जुन डोर से सब देखता रहा। एक दिल में तूफान चल रहा था। उसने सोचा, मैं रेस छोड़ देता हूँ। स्पोर्ट्स सर को पता चला, वो सीधा हॉस्पिटल आए। पागल हो गया है क्या तू, रेस छोड़ेगा? अर्जुन बोला, सर घर ज्यादा जरूरी है। सर ने गुस्से में कहा, घर के लिए ही तो भागना है, तू रेस नहीं भागेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। पापा ने भी ऑक्सीजन मास्क के साथ धीरे से कहा, बेटा मेरे लिए मत रुक। एक दिन जब लोग मुझे गोल्ड मेडल विनर का बाप बोलेंगे ना, तो मुझे और प्राउड फील होगा। तब मेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। तब मेरी सारी खुशी बस तुझ में नजर आएगी। अर्जुन टूट गया। उसने पापा का हाथ पकड़कर बोला, आप देखना पापा, मैं जीत कर ही आऊंगा। स्टेट चैंपियनशिप का दिन आ गया। हजारों लोग स्टेडियम में बैठे थे। टीवी कैमरास, मीडिया, नेशनल सिलेक्टर्स। अर्जुन पहली बार इतनी बड़ी रेस में हिस्सा ले रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। सर ने उसे एक छोटा सा तिरंगा दिया और कहा, इसे पॉकेट में रख। जब डर लगे याद रख, तू अकेला नहीं भाग रहा, पूरा भारत देश तेरे साथ भाग रहा है। रेस शुरू हुई। सब एथलीट्स बहुत स्ट्रांग थे। 200 मीटर तक अर्जुन पीछे था। कमेंटेटर बोला, लगता है प्रेशर में आ गया। लेकिन आखिरी बेंड पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 1, 2, 3 रनर्स को पीछे छोड़ दिए। फर्स्ट लाइन में और फोटो फिनिश में पूरे स्टेडियम की नजर थी। सांसें रुक गई। रिजल्ट आया, विनर अर्जुन, स्टेट चैंपियन, नेशनल्स गेम के लिए सिलेक्ट। मीडिया उसके पास दौड़ पड़ी। अर्जुन, आप अपनी जीत किसे डेडिकेट करना चाहोगे? अर्जुन ने कैमरा की तरफ देखा और कहा, ये मेडल मेरी माँ के बचे हुए कंगन का नतीजा है। मेरे पापा का खून पसीने की कमाई है और मेरे स्पोर्ट्स सर के भरोसे का मेडल है। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन नेशनल गेम से सिर्फ एक महीने पहले प्रैक्टिस के दौरान अर्जुन के पैर में चोट बुरी तरह लग गई। एक डॉक्टर ने सीधा कह दिया, हो सकता है तुम दोबारा कभी रेस नहीं भाग पाओगे। और ये सुनते ही अर्जुन के पैर की जमीन खिसक गई। अब आगे क्या होगा? क्या अर्जुन दोबारा रेस भाग पाएगा, या फिर अर्जुन को रेस छोड़नी पड़ेगी, या फिर कोई और नया मोड़ आएगा कहानी में? मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम दोनों नहीं जानते कि आगे कहानी में क्या होगा। पर इतना जरूर जानता हूं कि जो हौसला रखते हैं, जिनके अंदर जिद होती है और जो हर एक चीज को पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं, उनका सपना कभी खाली नहीं जाता, उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो देखेंगे अर्जुन का परिश्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरी ने मैं मेरा साथ दी। अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: ठहरिए देवता, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक गम हो जाए।
3: हो जाए, हो जाए, हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
2: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
4: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
5: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है वरना दुख होगा इसे।
3: Yeah!

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि हम जान रहे हैं, अर्जुन एक रेस हारा, फिर उसने अपनी कोशिश जारी रखी, उसे सर मिले, सर के साथ उसने प्रैक्टिस की, फिर एक कंपटीशन गया, उस कंपटीशन को उसने जीता, लेकिन वो वहीं तक नहीं रुका, उसकी जिद काफी बड़ी थी। उसके माँ का जो सपना था उसे वो पूरा करना था, और अर्जुन उस सपने को पूरा करने के लिए हर एक वो काम कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। अर्जुन कभी पीछे नहीं हटा, अर्जुन ने बस यही कोशिश की कि वो किस तरीके से अपने माँ के सपने को जिंदा रखे और अपने माँ के सपने को पूरा करे। तो चलिए देखते हैं अब कहानी का आखिरी हिस्सा। डॉक्टर्स की बात अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। लिगामेंट टियर हो चुका था, अगर जल्दी रेस भागे तो करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। एक पल के लिए सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। नेशनल गेम्स सिर्फ 1 महीने दूर थे। जिस सपने के लिए उसने सालों तक पसीना बहाया, वही सपना उसके हाथों से अब दूर जा रहा था, फिसल रहा था। उस रात अर्जुन ने पहली बार भगवान से शिकायत की, मैं ही क्यों, आखिर मेरी क्या ही गलती है, मैं तो सिर्फ अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, तो मेरे साथ ही ये क्यों। उसकी माँ चुपचाप उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा भगवान कभी किसी का सपना नहीं तोड़ते, वो सिर्फ देखते हैं सपना देखने वाला कितना मजबूत है, और अगर तुम मजबूत हो तो जरूर तुम ये अपनी परेशानी अपनी कठिनाई को पार कर जाओगे। और उसके बाद अगले 1 महीने रेस से ज्यादा मुश्किल था। पेन, फिजियोथेरेपी, आइस पैक्स, एक्सरसाइज, हर दिन दर्द, कभी घुटना जवाब दे देता, कभी कॉन्फिडेंस, और क्या, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन स्पोर्ट्स सर हर रोज बस उसे एक ही बात बोलते, गोल्ड मेडल ट्रैक पर नहीं जीता जाता, गोल्ड मेडल पहले दिमाग में जीता जाता है और उसके बाद गोल्ड मेडल मिल जाता है। अर्जुन मेडिटेशन करता, विजुअलाइजेशन करता, हर रात आंखें बंद करके फिनिश लाइन इमेजिन करता, और हर बार उसके सामने तिरंगा लहराता और खुद को देखता। अब धीरे धीरे 1 महीना गुजर चुका था, नेशनल गेम्स अब आने ही वाले थे, और आखिरकार नेशनल गेम्स वाला दिन आ गया। देश के हर स्टेट के चैंपियंस एक ही स्टेडियम में खड़े थे। कमेंटेटर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, आज का 400 मीटर का फाइनल रेस, यहाँ से निकलेगा भारत का अगला चैंपियन। स्टैंड में हजारों लोग, टीवी कैमरास, मीडिया, और वीआईपी गैलरी में अर्जुन के पापा, जो एक्सीडेंट के बाद पहली बार व्हीलचेयर पर स्टेडियम आए थे। उनके पास माँ बैठी थी। माँ ने धीरे से कहा, देखो हमारा बेटा, देखो। पापा की आंखों में आंसू आ गए, और क्या, रेस शुरू हुई। ऑन योर मार्क्स सेट एंड विसल बजी। सब एथलीट्स बिजली की तरह निकल पड़े। 100 मीटर अर्जुन चौथे नंबर पर था। कमेंटेटर्स बोला, अर्जुन स्लो स्टार्ट ले रहा है। 200 मीटर अब तीसरे नंबर पर। स्पोर्ट्स सर चिल्लाए, पेशेंस, 300 मीटर अब तीसरे नंबर पर। लेकिन उसके इंजर्ड पैर में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। एक सेकंड के लिए उसका बैलेंस ही हिल गया। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात गूंज रही थी, करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी पल उसने वीआईपी गैलरी की तरफ देखी। पापा व्हीलचेयर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। माँ हाथ जोड़कर दुआ कर रही थी। स्पोर्ट्स सर दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाए, और इतनी जोर से चिल्लाए, अर्जुन तिरंगे के लिए जीतना है। बस ये कुछ शब्द सुनते ही जैसे अर्जुन के अंदर एक रोशनी दौड़ पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एक रनर क्रॉस किया, फिर दूसरा। अब सिर्फ उसके आगे 2 एथलीट बचे थे। आखिरी 50 मीटर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया।
कमेंटेटर चीख रहे थे, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा फिनिश बहुत कम देखने को मिलता है, और आखिरी के 20 मीटर में तो पूछिए हिम्मत, दोनों रनर्स खड़े हो

कांधे से कांधा मिलाकर भाग रहे थे 10 मीटर 5 मीटर और क्या फिनिश लाइन और फोटो फिनिश और पूरा स्टेडियम खामोश। सबकी नजरें स्कोर बोर्ड पर थी। कुछ सेकंड जो अर्जुन को घंटों जैसे लग रहे थे, फिर स्क्रीन पर रिजल्ट फ्लैश हुआ। गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ। अर्जुन पोडियम पर खड़ा था, उसके कंधों पर तिरंगा था, गोल्ड मेडल उसके गले में था। जैसे ही तिरंगा सबसे ऊपर गया, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेडल को चूमा और धीरे से कहा, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी माँ का सेक्रीफाइस है, पापा की मेहनत है और स्पोर्ट्स सर के भरोसे का नतीजा है और हर उस इंसान का है जैसे जिसे कभी लोगों ने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने वो कर दिखाया। अब एक अनोखा फैसला आने ही वाला था कि अर्जुन ने अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया से पूछा अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब आपका अगला सपना क्या है? सबको लगा वो ओलंपिक्स बोलेगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं ओलंपिक्स जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गांव में एक फ्री स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा ताकि किसी और बच्चे को फटे हुए शूज की वजह से सपना ना छोड़ना पड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 5 साल बाद जहां कभी अर्जुन अकेला सुबह 4 बजे दौड़ता था, आज वहीं 300 से ज्यादा बच्चे हर सुबह 4:30 बजे दौड़ते हैं। गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था अर्जुन गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स एकेडमी और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान लेने वालों की कभी जीत नहीं होती। एक छोटा सा लड़का अर्जुन जिसके पास सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके पास वो मेहनत, वो जिद, वो लगन थी और उसी जीत के चलते, उसी मेहनत के चलते उसने अपना वो सपना पूरा किया। उसने वो गोल्ड मेडल जीता, उसने अपना हौसला बुलंद किया और उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस पूरे शहर में, उस पूरे मोहल्ले में इतने स्टूडेंट्स अब रेस में और अलग अलग तरह के खेलों में हिस्सा लेने लगे जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। मैं आपसे कहता हूँ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।